नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की प्रथम तिथि। तदनुसार दिनांक 23 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केबल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती,
5: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे लंका कांड आज भाग 320।

संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज भाग 8 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे 7:30 पर सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। आलेख एवं स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे। सुबह 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित। सुबह 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम और 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली दिन में 3 बजे आप सुनते हैं और आज सखी सहेली में आप सुनेंगे इन विषयों पर बातचीत, विलुप्त होती लोरियां, पारंपरिक गीत, शब्द हमारा, विचार आपके, आशा, साड़ियों का संसार, बाघ प्रिंट साड़ी जो कि मध्य प्रदेश की प्रचलित है, और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर बातचीत, व्यंजन लोकी के व्यंजनों के बारे में चर्चा की जाएगी। संवादक सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा वड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। संपादन सहयोग काजल भदरगी का है, प्रस्तुति जुबेर खान की। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम, 6 बजे हिंदी में समाचार और समाचारों के बाद 6:05 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने जारी रहेगा। शाम 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा आज राग अनुराग, और 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका जमीन के लोग, लेखन वीएम आनंद और निर्देशन दिनानाथ का है। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर, 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए, और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर, आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज के कार्यक्रमों का झरोखा।

भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाद ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूँ, अभी से क्या कहूँ। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

0: रानी की विशेषताएं। इस संबंध में सौदाहरण जानकारी पर आधारित श्रृंखला इन दिनों संगीत सरिता में प्रसारित की जा रही है। प्रस्तुत करता है जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। अब राग यमन कल्याण में अपनी ही बनाई बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बंदिश परमात्म परक है, जिसमें गायकी के अहम अंगों का प्रयोग हुआ है, बल, पेंच, छूट, जरब, गमक की तानों के साथ अवरोही की गमक की तानों का इसमें आप अंदाज देखिए। तो सुनिए राग यमन में बंदिश।

राग यमन कल्याण की बंदिश के बाद मैं राग मालकौंस की विलंबित ख्याल की बंदिश जो उस्ताद अमीर खान साहब ने जुत ख्याल करके गाई है, यह बंदिश बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही मधुर और श्रवणीय है। इसमें भी उन सभी अंगों का प्रयोग हुआ है जैसे गमक तान, अवरोही की तान, मेरुखंड, मेरुखंड की सरगम और गमक के साथ कड़क तान। तो सुनिए मालकौंस की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

0: प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता में सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति पुरुषोत्तम वालावलकर की और तबले पर साथ ओमकार गुलवाड़ी का था। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम भूले मिस्टर गीत में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं ऐसे महान गीतकार को जिनके शब्दों ने हिंदी सिनेमा के गीतों को भावनाओं की खूबसूरत जुबान दी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आइए सुनते हैं उनकी कलम से निकले कुछ यादगार गीत। पहली झलक इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चंपा कली से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। इस गीत को भी लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

0: छुप गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए के,
0: छुप गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे, ये चांद का टुकड़ा छुपाए थे।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। आज है उनकी पुण्यतिथि और आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं उन्हीं के लिखे गीत नया आदमी। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, विश्वनाथ एम मूर्ति का संगीत।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आज आप सुन रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत। हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं, वक्त है एक अंतराल का।

0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत। आजाद फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन बनाई है सी रामचंद्र।
1: देखो जी बहार।

0: la la la la la la la
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
0: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए
4: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और आपको सुनवा रहे हैं शतरंज फिल्म का गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

सम्राट फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हेमंत कुमार का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आगे के कार्यक्रमों में भी हम साथ होंगे। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पूजा नारायणिया को नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। आज कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत में हमने आपको सुनवा है गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे कुछ यादगार गीत, और अब हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम में भी आप सुनेंगे उन्हीं की कलम से निकले कुछ खूबसूरत नगमे।

0: फिल्म छाया से अभी ये गीत सुन रहे थे आप, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, बोल राजेंद्र कृष्ण के, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला

0: शताब्दी की भक्ति रचनाएं सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि और हम उन्हें याद करते हुए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म भाभी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, चित्रगुप्त का संगीत है।

संजोग फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण की रचना, मदन मोहन की बनाई धुन।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आरजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है दो चोर।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में यह अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है जीने की राह।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत पूजा नारानिया को, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत, आज थी उनकी पुण्यतिथि, उन्हें नमन।

सुबह की 8 बजने वाली है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव

0: निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: In determining the future of the international system.
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
4: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
3: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
4: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्यस्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
5: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
4: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
6: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली

0: योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगू करती मालूम होती है। इस गुफ्तगू को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

0: छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटे दुख सुख अपने। जो पल आए हंसता आए लेकर रंग हजार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा साया साथ होगा।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में होंगे हाजिर।

0: नए गानों के कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए इस सुबह की भी शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक एनर्जी से भरे हुए गीत के साथ। आगे भी आपको कई सुरीले गीत सुनने को मिलेंगे, ये हमारा वादा है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ विविध भारती पर।
1: Chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka ch

वेलकम टू द जंगल, इस फिल्म का गीत अभी हमने आपको सुनवाया। हालांकि कार्यक्रम हमने आपको शुरू में बता ही दिया कि चल रहा है चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती पर, और इस गीत को गाया था आनंद राज आनंद ने और उनके साथियों ने। मेघा बाली और आनंद राज आनंद के ही बोल थे, विक्रम मॉन्ट्रोज और आनंद राज आनंद का संगीत था। और अगला गीत सुनवाने से पहले हम आपको बता देते हैं एक जरूरी बात। 23 सितंबर आज है हिंदी साहित्य के उस तेजस्वी रचनाकार को याद करने का दिन, जिनकी कलम में कविता भी थी और क्रांति की आवाज भी। जी हां, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने अपनी रचनाओं के जरिए हमें सिर्फ शब्द नहीं दिए बल्कि साहस, आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना की प्रेरणा भी दी। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के चार अध्याय जैसी उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को सोचने, सवाल करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आज उनकी जयंती पर क्यों न दिनकर जी की ही कोई रचना पढ़ी जाए, क्योंकि अच्छा साहित्य सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, वह हमारे विचारों को दिशा देता है, हमारे भीतर संवेदना जगाता है और जीवन को थोड़ा और सार्थक बनाना सिखाता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले।

0: विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
4: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अरे सुनो, कल 3 की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 मैं तो 3 बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।
8: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी लौट आते हैं।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टॉक्सिक से। इस गीत को लिखा है कौशल किशोर ने, गायक कलाकार और संगीतकार विशाल मिश्रा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। जन नेता इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। गाया है इसे नित्य संतोषिनी ने। रितेश जी राव का लिखा गीत, अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत।

जननेता फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसके गायक कलाकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। नित्या संतोषिनी ने इस गीत को गाया था। अब अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं आपको बता देते हैं कि आज है 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी नेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। क्या आपने कभी सोचा है जब शब्दों का साथ ना हो तो भावनाएं कैसे व्यक्त की जाती है, हाथों के इशारों से? जी हाँ, सांकेतिक भाषा के जरिए। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के महत्व को समझना और बधिर लोगों के अधिकारों, संवाद और समाज में उनकी समान भागीदारी के प्रति जागरूकता को फैलाना है और बढ़ाना है। एक खूबसूरत बात यह है कि जिन्हें अपनी बात कहने के लिए सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें हमसे भी थोड़ी समझ और संवेदनशीलता ही तो चाहिए। हम उनकी भाषा सुन तो नहीं सकते, लेकिन उनके इशारों को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं ताकि भावनाओं के ये खामोश संकेत हम तक भी पहुंच सकें। और यकीन मानिए, यही कोशिश समाज को थोड़ा और संवेदनशील और समावेशी बनाएगी।

पापोन और सुनिधि चौहान की आवाजों में अभी आपने गीत सुना फिल्म बर्फी से। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा था, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया था। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं नहीं जाइएगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दीपाली सहाय की आवाज में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म का नाम मैं वापस आऊंगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज सुबह 9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, और साथ ही आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर रात में केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर। धमाल 4 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं संजू राठौर की आवाज। रश्मि विराग और संजू राठौर का लिखा गीत, तनिष्क बागची और संजू राठौर का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक।

धमाल फोर फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, राम संपत का संगीत, फिल्म का नाम एक दिन।

0: सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
2: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब यह है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खाते

0: की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई, जनधन खातों में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
1: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसमें 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास, जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए, जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम है, हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया
1: सुरक्षा
2: और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो पेंशन योजना हो, ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण के बढ़ाए एक कदम है।
1: बिल्कुल, अरोड़ा साहब जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलेटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलेटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं, उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरोड़ा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं?
0: जैसे आपने जैम की बात कही, जैम का है जय से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है, और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया, तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
2: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
1: जी?
2: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है, और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है, ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है, क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा। तो यही यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है जिसपे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्कसंगत फैसले लेती हैं वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,19 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए पेंशन की उपयोगिता क्या है? अब देखिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है, यहां तक कि जब पहली जनवरी

0: 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में हैं। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है, और उनके लिए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3000 रुपए मिलेंगे। फिर वही बात आती है कि क्या 3000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है, और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं, यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया, और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है, तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मोर्टगेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल, और अरोड़ा साहब हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई, आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
2: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा

0: सकते हैं और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी। मान ली 5000 की हुई है 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का या डिसेबिलिटी फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है 20 रुपीज सालाना केवल और 31 मई को कटता है 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का 20 रुपीज होता ही कितना है बहुत नॉमिनल अमाउंट है और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए 436 रुपए सालाना ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है उनके लिए पेंशन स्कीम है एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस वो भी आपको जाना है खाना है इलाज कराना है और सीधा आप साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं कोई पैसा कोई पेमेंट कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
1: बिल्कुल शिशिर जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पर स्टडी करते रहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
2: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे हैं आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या है झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है आपके पास आयुष्मान कार्ड कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है? जो हमारे निम्न आय वर्ग है, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
0: लिमिटेड।
2: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले

0: का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं।
1: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेट्रल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब हैं जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिशन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये था अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकंड जो भाग में अगर वो अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपये तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपये का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड की गई है, 2020 से लागू की गई थी अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है जो एक कभी ये बैंक की तरफ आई नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी एक कितना बड़ा बदलाव होगा, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें, यानी एक तरह से एक सुविधा होगी 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
0: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल होने के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी पढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
2: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
0: जी जी,
2: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉग इन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे होते तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
0: जी,
2: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए, आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
0: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
1: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है।

0: कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112 या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका उसके ऊपर लॉगिन करें
1: और जल्द से जल्द करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थी और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखीं और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना

0: एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अभी मैं सपना देखता हूं कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
0: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है।
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं। और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से, जब हम किंडरगार्टन में थे तो दो तीन ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब एडेप्टेड प्लेज हैं। और जहां तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहां भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन हैं। अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि

0: कि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं। वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपीए है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी। पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं। भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से, और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी, क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णिया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के, कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में, और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी, वहां आग लग गई थी, और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा, ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया, और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं
1: बार बार
0: आते।
1: नहीं आते, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था, जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जेनरेशंस के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था, हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णिया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णिया दिखता कैसा है, हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पांस था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा।
1: जी
0: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
1: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
0: जी
1: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
0: अच्छा,
1: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
0: बहुत खूबसूरत बात है।
1: फिल्म जो है हमको बढ़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं, उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल है, जिंदगी के करीब है, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गई कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
0: अच्छा।
1: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन

0: से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा, या आपको लगा रही मैं कहाँ फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर्स थे। मजा तो बहुत आया क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए, आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता था।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूं। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूं या डायरेक्टर पाता हूं।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी। और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त। शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूं कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बंबई में है हम।
0: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो

0: ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
1: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
1: आप यहां इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरे टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
0: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
1: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
0: जी
1: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल। और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके, जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है, तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया। और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूं, और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
0: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
1: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
0: वाह।

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है। वो आदमी शायद, उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे। वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे, उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
0: ये
1: ऐसा
0: तो
1: मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं। उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो, दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: बिल्कुल
0: पूरी
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी बोझ पर सर
1: डायरेक्शन के
0: पर?
1: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं। तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम?
0: जी
1: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
0: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
1: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है। और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है, वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स

0: हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कंपटीशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे।
0: जी
1: वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है, जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक
1: हम
0: कहा।
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं, नहीं मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है
0: ओह
1: सुनिए।
0: अच्छा बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: हाँ, संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ, फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत जरूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीजों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो, और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: रंग तरंग
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम रंग तरंग। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं और सभी को मेरा नमस्कार। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनीता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानिनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी

लगे जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई।

मकता पेश कर रहा हूं जनाब, अमीर मिनाई की गजल है, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मकते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फ़र्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फ़र्क है।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। अमीक हनफी की कलम से निकली ये गजल उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी, तो आइए सुनते हैं।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के, और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने। इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर।
2: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की
5: कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शटील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं, ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
2: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
2: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
2: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
2: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
2: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
2: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
2: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
2: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
2: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
2: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य

0: मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फ़ारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
0: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक और प्रश्न से आविष्कार तक।
1: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready.
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes. We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right.

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता।

जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी, जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझ

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिये का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: देते जाते
1: किसी एक दिन
2: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकी आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता

0: चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुंचानी है।
1: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
0: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुंचाते हो?
1: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक, मोटर से, ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से, कहीं पे ट्रेन से, हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
0: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
1: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव, शहर शहर, सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
0: लाखों कर्मचारी, सब लोग कैसे काम करते हैं?
1: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहां से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
0: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
1: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुँचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
0: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेट बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
0: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
1: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
0: हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
1: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम आपको बता दें, आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार सायं 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार सायं 6:50 से 7:20 तक। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर था, 747।
6: विविध भारती।

0: इंदिवर की बोलते ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: जीने की राह फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: सारे मस्त नजारे चलते चलाते तू भी समझा
1: समझा आ ठंडी हवा
0: आ हाथ समझा।

साथ ही मेरे साथी फिल्म का गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी की बोल संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम हर रोज एक इबारत पोस्ट करते हैं, एक टेक्स्ट होता है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर आता है। फेसबुक पर जाना है और लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती का पेज नजर आएगा, यहां होती है हमारी इबारत। आज की इबारत डायरी का एक अंश है, एक लड़की की डायरी का एक अंश। याद है तुम कहा करते थे, तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं इकरार करूं। तब सब सच लगता था। एक सहेली ने कहा था, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, हंस के उड़ा दी थी वो बात। पर फिर प्यार भी खोया मैंने, सब कुछ हार के। आज कितना उदास है सब, सब कुछ ठहरा सा, पर चलते रहे हम। गमराह में खड़े थे वो साथ हो लिए, सोचा नहीं था एक दिन पराए हो जाओगे तुम। पराए हो गए तो क्या, कभी ये भी तो थे अपने। इंसान गैरों से थोड़ी उम्मीद करता है, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पुकारा था तुम्हें कई बार, पर खाली गई पुकार, तुमने खामोशी ओढ़ ली। खामोशियों से तो दिल और दिमाग चलते हैं। हाँ आंसू बहे बहुत बहे, मगर उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। तुम नहीं हो बदलते हैं मौसम, बारिश कोहरा धूप, चलती हैं हवाएं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। कभी कभी तो ये ख्याल आता है, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। पता है इंसान की सबसे खास बात क्या है, वो हर तरह के गम को भुला देता है, बाकी रह जाती है टीस। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, अब तो यही लगता है कि जमीन और आसमां हमसे दोनों खफा हैं। किसी लड़की की डायरी के ये अंश हैं और इसमें वो गाने छुपे हैं जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत ही जज्बाती होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, और अगर आप अपने दिल की बात फेसबुक पर कमेंट में हमें लिखते हैं तो ये कार्यक्रम जज्बात के मोती से सज जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कभी डायरी में आपने अपने दिल की बात लिखी, या अपने किसी दोस्त अपनी किसी सहेली से अपना दर्द उड़ेला। आज की इस इबारत को पढ़कर क्या याद आया है आपको, बताइएगा। शुरू करते हैं इस गाने के जरिए।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है, और हाँ, किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना।

एक श्रोता लिखते हैं कि किसे याद करके ये गाना गाया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता, इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं। कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती हैं उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहाँ हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया, अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली, एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो, इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया, और भीगा भीगा है समा ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है। मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफ़र काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफ़र कई तरह के हो सकते हैं, ज़िंदगी का सफ़र, नौकरी का सफ़र वगैरह। आज के गाने ज़िंदगी के सफ़र में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं ज़रूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज़ के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतज़ार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्य देव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखा

जाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीज़ें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्माया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 पे विद भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे, उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख

भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोरपंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और ना शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त तो होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहती हैं कि हम अपने कॉपी में मोरपंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोरपंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहाँ और आराम कहाँ, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है। लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों की डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी। एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव। मेरी माताजी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था। बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीज़ों के दाम थे वो देखकर आज चीज़ों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत क्या आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूँ, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूँ। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही हैं कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है, यानी जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

तलत महमूद की आवाज आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस अनूठी आवाज से आप कितना प्यार करते हैं ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बर्लिन में इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं, यहां ठंड शुरू हो गई है, सुबह के 10 बजे हैं और धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रही हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अब तो टीवी से दूर ही रहते हैं, चश्मे तो पहले से चढ़े हैं, अब मोबाइल भी बस सुरीला खेलने के बाद रख देते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता क्विज में हिस्सा लिया था और मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला था और एक सुंदर सी डायरी मिली थी जो उनके पास अभी तक है। एक श्रोता हैं जिनकी बेटी जब से बाहर पढ़ाई के लिए गई है तब से उनकी नींद गायब हो गई है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी डायरी में 300 से ज़्यादा गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज़ के बारे में ये श्रोता कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज़ में सुना करता था, जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था, शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्दे दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज़्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज़्यादातर श्रोता जो हैं वो ज़रूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजैक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के ज़रिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की ज़रूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं, जो हमारी ज़िंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो ज़रूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्ने को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गईं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहती है नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के ज़माने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के ज़माने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनता रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रे पंछी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताज़ा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि आज के ज़माने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना ज़माना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का उदासी का टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको संबल दिया। जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं।

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूँ तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरे कविता लेखन की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप 2 दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा, विश्वास वो चीज़ है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आखिरी पेशकश

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। सुरीला सफर कार्यक्रम के जरिए और विविध भारती के जरिए जिंदगी को सुरीला बनाते रहिए। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के साथ रहिए। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलते हैं, रहिए विविध भारती के संग।

0: दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।
1: तेरे

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीजों से उसे सजाते हैं। फर्नीचर हो, पर्दे हो या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स, घर का हर कोना, घर की हर चीज जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नजर हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना।

0: रंग हजार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफ़र आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2040 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था।

0: ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
2: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
4: माय नेम इज रमेश।
5: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
4: दिस स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
2: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।
4: न झटको जुल्फ से पा

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
2: सोनाली पाठक का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार
1: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
2: बताइए
1: क्या
2: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले

0: रही थी, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
1: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं
0: हाँ
1: क्या खा रही थी।
0: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपकी तरफ ध्यान था।
1: अरे अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली, कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
0: आप इन दिनों कर रही हैं, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
1: अच्छा, क्या लेती
0: हाँ,
1: हो?
0: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
1: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती हो, और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
0: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है, तो उस पर हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया, और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं, और किस तरह से आप अपनाते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है,
0: जी
1: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं।
0: जी
1: ठीक है,
0: साथ ही आज एक और दिन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन है
0: बहुत
1: ये।
0: महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे, उसमें अब सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी
0: जी
1: करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना, तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ
0: समझ
1: भी आ
0: आ
1: जाते
0: जाते
1: थे,
0: थे।
1: है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते। जब
0: हाँ
1: हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी, तो हम
0: कितना
1: उस संकेत से अपनी बात कहते थे। तो
0: मजेदार वो
1: हाँ,
0: माहौल
1: बचपन
0: हुआ
1: था,
0: करता
1: माहौल हुआ
0: था।
1: करता था, वो आज
0: जी
1: भी हमें याद है।
0: जी
1: बिल्कुल, और बताइए।
0: साड़ियों का संसार, इसमें बाघ प्रिंट साड़ी, मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है
1: हाँ,
0: ना।
1: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो
0: है
1: कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर,
0: जी,
1: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई, या क्या
0: कौन से कलर
1: आपको
0: की है आपके पास
1: कैसी
0: में।
1: है, और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पति देव ने क्या कहा।
0: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी
1: अरे बताना चाहिए, अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
0: वही तो। और शब्द हमारा, विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं, तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है?
0: और नहीं, व्यंजन भी है ना आज, लौकी के व्यंजन।
1: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं।
0: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
1: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही हूँ,
0: क्यों,
1: मैं लौकी मुझे पसंद नहीं है।
0: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद।
1: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
0: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
1: अरे वाह, मुझे
0: हाँ,
1: लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
0: और सब्जी भी, उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो, तो वो भी आपको पसंद आएगी।
1: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं, बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन्हें लगे कि नहीं, लौकी बहुत अच्छा।
0: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है।
1: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है,
0: जी
1: पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
0: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
1: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में,
0: हाँ,
1: क्या मम्मी लौकी की सब्जी
0: तो
1: बना
0: फिर
1: दी।
0: मम्मिया क्या करती है, उसके पराठे बना के खिलाती है। पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
1: बिल्कुल
0: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
1: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता, कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते
0: खिलाते
1: हैं,
0: हैं।
1: है ना। तो
0: और आप
1: अब
0: एक गाना सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें अभी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज यानी प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है।

0: आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है, जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
0: जी,
1: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
0: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
1: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारी मानसिक शांति का भी इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
0: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है ना? और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें, जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना, आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
1: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
0: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
1: अच्छा,
0: यानी इस दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की
1: गई है। कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में। और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी है
0: जी,
1: है ना।
0: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है। मतलब आज ये दूरियां नजदीकियां अपन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं, जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
0: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
1: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: है ना?
0: तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को, ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें
0: मुक्ति मिल सकता
1: है ना।
0: जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गर्म खाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम, यानी गर्म गर्म गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है आयुर्वेद में। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था, लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे

0: गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
1: और अब गीत सुन ले एक
0: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारे सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है
1: जी।
0: और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ।

0: बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: जी, सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और जो संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते वहाँ संकेत संवाद का पुल बन जाते हैं।
0: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
1: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
0: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है।
0: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है, वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है। तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में अपनाते
0: हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना, रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है, हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी,
0: साथ ही हल्दी का दूध
1: पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
0: और जो आजकल के बच्चे ना, नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें, है ना, या दुबले पतले, इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
0: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर। तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
1: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
0: अच्छे होंगे,
1: तो शरीर
0: अच्छी होगी,
1: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली,
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहां आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी
0: बाग प्रिंट साड़ी।
1: हाँ।
0: क्या बात है।

0: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है बाघ प्रिंट साड़ी, और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाघ प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
0: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है, और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
0: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
1: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
0: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: सोचिए, थोड़ा सा भी आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है। कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
0: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है, काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
1: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाघ प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
0: और इसके प्रिंट देखे तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें इन जो चित्र बनाए जाते हैं। और इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि वे बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
1: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाघ प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
0: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाघ प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाघ प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको बढ़ाता है, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं, उनके अनुभवों को।
0: जी, और बाघ प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
1: और इसीलिए बाघ प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो ये नदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चलें?
1: चलिए और ले लेते हैं।
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाग नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाग प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की

0: कभी किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की
1: तैयारी
0: तैयारी
1: होता
0: होता
1: है। ये
0: है।
1: तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में, तो हम उदास हो जाते हैं। अरे जिंदगी तो हमारी स्टफ
0: बोरियत
1: हो
0: सी हो
1: गई,
0: गई है
1: उबाऊ हो गई,
0: जी।
1: जिंदगी तो यही ठहर गई। लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
0: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है, तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास यानी सांस जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वो हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: होती है। और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको
0: सुनवाएंगे।
1: सुनवाएंगे।

0: तो हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है। छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं।
0: अच्छा।
1: कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक नहीं, लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए, हींग चाहिए, कटावा धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरी में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंध लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। ताजा दही 2 कप, फेटा हुआ भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हिंग, राई। बनाने की विधि, कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और इस उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में ले थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें। छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है, पता चलेगा
1: जरूरी है,
0: कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस की भी लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए, दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं, इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहें, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में

0: कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिख कर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस से
1: कसले
0: है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माएं इडली बनाती है ना उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी और लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिये में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को लौकी खिला कर ही छोड़ती है।
0: इसलिए लौकी एक और उसके रूप अनेक है ना।
1: और अब गाना
0: बिल्कुल

Lugar.

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी श्याम की बातचीत।
1: श्रोताओ नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नज़र आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबॉडी, और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी

0: वैब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली, मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे। मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है। तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूज़िक, कुछ गाने। तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का। और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का
0: विविध
1: आपको।
0: भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज,
1: जी
0: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी
0: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम। तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोलूँगा मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ये सफर जो यहाँ तक पहुँचा है
0: जी
1: आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा
0: बिल्कुल
1: भी
0: बिल्कुल
1: आपने
0: सर,
1: कहा, वो चीज़ दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत, अगर करनी
0: जी जी
1: है तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहाँ जन्म हुआ आपका?
0: सर, मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली NCR में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका?
0: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का और वहाँ की स्कूलों कॉलेजों पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर मैंने BCom किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने MA हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्ज़ाम दिए, सब कुछ किया। बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं,
0: मैंने
1: लेकिन
0: किया।
1: इतिहास की आपने जब बात की है,
0: जी
1: तो आपके जितने सीरियल्स हैं
0: जी
1: जो धारावाहिक हैं,
0: जी
1: वो ऐतिहासिक ना भी कहें तो पौराणिक तो है
0: पौराणिक
1: ही,
0: तो है ही है।
1: पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो
0: हाँ हाँ
1: आपको पसंद था,
0: हाँ
1: आपने वो एग्ज़ाम के लिए तैयारियों के लिए
0: बिल्कुल
1: किया था
0: बिल्कुल
1: ज़रूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचा है वो।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहते हैं ना समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज़ के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फ़र्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, और जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीरियंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज़ जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज़ रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी। तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो का मतलब
1: बिल्कुल
0: एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग ए नॉवल, पार्वती

0: जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो मायथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहाँ निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप एक ओहो ये चुभ रहा है, जैसे
1: लेकिन
0: एक्शन
1: आपके मुस्कान जो है ईश्वरीय है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा ये बताइए कि
0: जी
1: सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जो किरदार देखे नहीं
0: देखे ही
1: हैं,
0: नहीं है
1: माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते,
0: देखो
1: तो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिव जी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिव जी की तरह फील करना, शिव जी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं
0: जी
1: उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर
1: कॉस्ट्यूम्स
0: का, हाँ
1: पहनते हैं।
0: कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता
1: जी
0: हाँ यार ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द कह दूं कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज़ बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, जो उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके,
1: बिल्कुल
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर उस
1: जी
0: करेक्टर
1: जी
0: को
1: जी
0: करते हैं
1: जी
0: उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना हो वो छवि जो है,
1: जी जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी
1: और
0: है।
1: सामाजिक फिल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है, आपका अपना अंदाज भी काम
0: अंदाज
1: करता है,
0: काम आप
1: और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में
0: नहीं,
1: वो छूट नहीं होती।
0: वो बिल्कुल नहीं होता सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता, कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही। श्लोक जो है,
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आपको संस्कृत में बोलना तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर
1: नहीं
0: सकते।
1: कर सकते,
0: तो
1: अलग अलग अंदाज में नहीं कह
0: जी
1: सकते
0: जी
1: आप।
0: जैसे मेरा करेक्टर था भगवान वाल्मीकि का, राम सिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से, मेरे ही आश्रम से,
1: अच्छा
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है,
1: जी
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया, वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने कम से कम, नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की,
0: जी
1: लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में, आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है
0: जी
1: कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते और सुनवाते हैं,
0: जी जी
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो
0: जी
1: कौन सा था, वो हम बाद में करें।
0: जी जी
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है, वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई?
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता ज़रूर है। एवरीबडी इज़ एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं, और सिंगर भी हम सभी हैं, और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएँ हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएँ हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता है ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन क्या, आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, तो आप उसी राह पे चलते हैं।
0: जी
1: आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अंत में आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, कीड़ा जो उन्होंने डाला दिमाग में, वो ही
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहाँ से आ जाता
1: सर। एक एक
0: है?
1: कहावत है ना
0: इंटरेस्ट,
1: कि
0: रुचि जगाई।
1: एक कि मतलब,
0: जी
1: हाँ मतलब
0: जी
1: रुचि जगाई, या किसी ने पिंच किया, या किसी ने
0: बिल्कुल,
1: मतलब
0: उस ओर प्रेरित
1: आपको चूज किया,
0: किया।
1: तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा
0: हाँ,
1: वो कहते हैं ना
0: नहीं,
1: उसको
0: बड़ा अच्छा है ये
1: जी। तो अच्छा रहे तो
0: कीड़ा।
1: ज़्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी
0: जी
1: और
0: जी
1: बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे,
0: नहीं तो अभी
1: काम
0: तो नहीं है ना।
1: अभी भी कभी कभी, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। सो काम ने करना, कुछ ना करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसेप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते हैं, तो वो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो हैं बलबी मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉट्स इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा, तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट, देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बोल के दिखाओ, हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है, और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते, पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो जो ससुर का करेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था, वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता, ये तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का करेक्टर किया जो दहेज का लालची

0: होता है, पूरे बाल बाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल, नहीं भाई मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी। वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th 10th 11th 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में यह था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देख रही थी, मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठ बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा
1: क्या
0: होता।
1: बात है।
0: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
1: तो सब अच्छा हुआ ना।
0: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
1: हाँ ये बात सही है।
0: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, 1 साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वॉज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था दो हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वॉज अ कैमियो करेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है
1: हाँ
0: या
1: जी
0: मेन रोल क्या होता है या ये के, तो ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जब प्रोडक्शन से कॉल आया, राजश्री प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसे समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2 दिन 3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट जी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती में, और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते हैं, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है। तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज़ था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
1: हाँ मैं पूछूंगा ज़रूर आपसे, लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को
0: जी जी
1: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
0: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने, वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें, तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: संजीव
1: बिल्कुल।
0: जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे 4 ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए,
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे 4 बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ, जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर, स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं,
0: अच्छा
1: और विलन साइड में हम दो ही लोग थे, कंस और अक्रूर,
0: अच्छा
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे, बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए, क्योंकि
0: पर वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको
1: नहीं सर, वो
0: ऐसा?
1: नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे
0: नहीं
1: लगता तो
0: था।
1: नाम सोचेंगे अक्रूर, तो जेट क्रूर एंड अक्रूर,
0: हाँ,
1: तो वो
0: क्रूर
1: क्रूर
0: होना,
1: नहीं है।
0: क्रूर नहीं है वो,
1: हाँ, ये मुझे लगा कि शायद
0: अक्रूर है वो।
1: वो अक्रूर है।
0: अच्छा,
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन वो
0: हाँ
1: शुरू में
0: जी
1: क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज ऐसे, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं ठीक है मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा,
1: तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो वो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक

0: वहाँ पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहाँ पे, तो महाराज कंस ने आपको इनवाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है चल तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूं, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज द रीजन
1: हाँ
0: कंस को मारने की, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहां पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
1: कैसा प्रतिसाद मिला उस कैरेक्टर का आपको?
0: बहुत सर बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मैं बहुत बड़ी बात थी कि
1: हमारे
0: अक्रूर।
1: श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है
0: हाँ
1: ये अनसुनी है,
0: हाँ
1: और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार
0: हाँ
1: जो
0: सर,
1: मेन थे
0: उसमें
1: आपके।
0: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसे मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया,
1: जी
0: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर,
1: क्या
0: वंडरफुल
1: बात है,
0: करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना, आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज़म है जहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे वो पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो दैट वॉज अ स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
1: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है,
0: बिल्कुल सर,
1: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसे कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
0: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आपका जो काम है, जैसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं
1: हम
0: चुनते।
1: नहीं चुनते।
0: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता
1: बिल्कुल
0: है, जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल
1: जी
0: लें,
1: जी
0: गब्बर वॉज द बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया। तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे,
1: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना
0: बने
1: पड़ता है,
0: रहना।
1: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए,
0: सोचने
1: इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं।
0: तो कि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
1: ये बात तो है, और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं, कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
0: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं,

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो हैं लाइंस आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का, आपने इस दरम्यान बहुत बार जिक्र भी किया है
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: बातचीत में
1: जी
0: कि आपको बहुत संभालते भी हैं
1: जी जी
0: और उनका भी सहयोग रहता है, तो
1: बिल्कुल।
0: बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी। और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा बेटा शौर्या द वंडरफुल गाय है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है और वर्तमान में वो एक

0: बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में, वहाँ पे वो कार्यरत हैं।
1: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
0: सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
1: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं, तो
0: जी
1: गाइडेंस तो मिल ही जाएगा
0: बिल्कुल
1: घर
0: सर,
1: से ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इधर आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
0: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे, साइंस में।
1: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
0: नहीं मैं दबाव में डालता हूँ। मेरा कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए हो। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान ना करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आपके बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
1: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कौन सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है,
0: सर
1: ऐसा?
0: आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, वो ये कहता था यार यू आर वेरी नेगेटिव आइज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे ऐड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते हैं। तो आई वॉज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ विजन ही हैज, नहीं यार ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूँ ना उस सीरियल में, इतना रोया हूँ कि मैं एक बेटे के बाद
1: हिमवान आपने?
0: शिव शक्ति में मैंने
1: जी
0: किया, जिसमें पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद। तो मेरी दो बेटियाँ गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे कोई बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाए ना सर उसमें। मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज़ को समझने में। मैं कहता हूँ सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव करेक्टर दे, तो मेरा मन करता है मैं नेगेटिव करेक्टर निभाऊँ। तो पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो करेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
1: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं अच्छे से निभा पाएंगे?
0: सर अब तो मैं सारे करेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ अब तो
1: अच्छा,
0: मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना,
1: क्या बात।
0: है ना, गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना
1: हंसा
0: ये
1: देना
0: सबसे मुश्किल काम है।
1: सबसे कठिन है।
0: और सबसे मुश्किल काम है, आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप
1: तैयार
0: अपनी
1: पर
0: भावनाओं से किसी
1: हाँ
0: को इमोशनल कर सकते
1: कर
0: हैं,
1: सकते, किसी बात से कर
0: किसी
1: सकते
0: बात कर
1: हैं।
0: सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि आप
1: जी
0: सामने
1: जी
0: वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर एक किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूँ, फिर ये है कि जो करूँ अच्छा करूँ।
1: नहीं, वो
0: चलो
1: तो आप करेंगे ही।
0: जी
1: अच्छा, ये मिर्ज़ापुर 3 जो है,
0: जी जी
1: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है?
0: मिर्ज़ापुर 3 सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज़ के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था इनकी कास्टिंग कर दें, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्ज़ापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्ज़ापुर की जो कैरेक्टराइजेशन है मुझे

0: जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमी जी बड़े स्टाइल से, आई एम द डायरेक्टर। मतलब तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का कैरेक्टर कर रही, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था। मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्ज़ापुर पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरे सीज़न में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं क्या गुरमी जी कैसे, बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की। इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के। पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी। और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब, मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना। बोले नहीं, आपको किसने बताया, यही सुना था। बोले नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट हैं उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई, अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है। तो मैंने कहा हाँ, वो सरप्राइज। मैंने कहा अरे ये
1: कंटिन्यूटी
0: कि
1: में है।
0: हाँ मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए, तो आज तो बहुत काम है आगे। तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, कह रही ये कैसे हो गया। तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही एक कल्पना में होंगे। अच्छा अरे यार भाई ये तो बढ़िया होगा, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर बनाना रिमकाना। तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए। तो ये
1: काम करने में मजा आया कहने का
0: हाँ मतलब फिर
1: मतलब।
0: लगा यार इज अ कैरेक्टर बेसिकली, और कैरेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए हैं इसमें। और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मज़ा आ जाएगा। लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड कैरेक्टर। 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा, ऊपर
1: बिल्कुल
0: वाले ने चाहा
1: बनेगा,
0: तो।
1: हम आपको शुभकामनाएं देते
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत।
0: देर वॉज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
1: ये बात ये जीवन में जो है मायने रखती
0: ये
1: है।
0: मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम
1: फोकस
0: डूइंग,
1: करना है कि ये कर रहा
0: आई एम
1: हूं मैं।
0: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये हौसला कैसे रुके।

0: तो मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े
0: जी
1: किरदार
0: जी
1: किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं वो?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना, उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूँ, क्योंकि फिल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्में ही करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी वे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्टी की फिल्म थी, बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत ज़्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूज़िक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला उसमें, मेरा नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन्स, उनको देख के काम कर। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज़, अक्षय कुमार जी और दिलजीत दोसांझ जी का। एक के लिए ऑडिशन दिया था, एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी, मैं तो उन्हें देखते रह गया क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। ही सेड के आओ भाई जी, अच्छा लगा ना। मैं कहा
1: हाँ
0: सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी हाउ रिहर्सल वगैरह हुई, उनका मजाक के अंदाज है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा। मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी, मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा, मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड के ठीक है अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे।

0: गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाई जी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का उनका एक तरीका है
1: तरीका
0: जो
1: है।
0: उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान, और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इम्पैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदा एकदम, काम करो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो, मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें तो लोग उस पर हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है, लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं सर वो,
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं।
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा है कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज़ को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों को अनुसरण करेंगे, हम सोचते हैं
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं
1: सर
0: हमेशा करता हूँ।
1: और करते रहेंगे,
0: हाँ
1: और
0: नहीं
1: अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है, इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है,
0: बिल्कुल
1: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर, OTT का हो, टेलीविज़न का हो या फिल्म का हो,
0: जी
1: हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिलें, ऐसी कामना भी करता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर की हैं। बहुत बहुत
0: अब
1: धन्यवाद।
0: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं
1: जी जरूर।
0: कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर दें।
1: तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं,
0: जी
1: और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
0: जी सर, दंगल सॉन्ग की, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको तयशुदा कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए, इस बात का हमें खेद है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही कभी बारिश तो कभी हल्की ठंड के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि अभी गर्म शरद के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए और सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपके रेडियो हम सफ़र एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी बातें करेंगे खास विषय से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, हर बार हमारी चर्चा का विषय होता है बहुत ही खास, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफ़र के साथ। दोस्तों, कल्पना कीजिए हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारे पास शब्द नहीं हैं। अब जरा सोचिए, क्या बिना एक भी शब्द बोले हम अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, एक मुस्कान से, आंखों के भाव से, हाथों के संकेतों से, और यही है सांकेतिक भाषा। साथियों, सांकेतिक भाषा को वो भाषा है जो बिना किसी के बोले अपनी बात दूसरों तक संकेतों के माध्यम से पहुंचाना या दूसरों की बात समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। और हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उनके मन में भी कई सारी बातें चलती हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ संकेतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। वो भाषा जो वधेर लोगों के लिए हम रास्ता है हम तक बातें अपनी पहुँचाने का। और आज का दिन इन्हीं को समर्पित है, क्योंकि हम सांकेतिक भाषा का उतना ही महत्व दें जितना दूसरी भाषा को देते हैं। साथ ही साथ बधिर लोगों की बातों को समझें और उन्हें सम्मान दें। इसलिए आज 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, हर वर्ष 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि भाषा केवल बोलने और सुनने का माध्यम नहीं है। भाषा वो माध्यम है जिसके जरिए इंसान अपने विचार, भावनाएं और अपने सपने दूसरों तक पहुंचाता है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपनी बात कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते या सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हाथों की गति, उंगलियों की स्थिति, चेहरे का भाव और शरीर की मुड़ा में इन सब के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों और क्षेत्रों में अलग अलग सांकेतिक

भाषाएं विकसित हुई हैं। यानी किस तरह दुनिया में अनेक बोलियां और भाषाएं हैं, उसी तरह सांकेतिक भाषाओं में भी विविधता है। और दोस्तों, भारत में भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज बधिर समुदाय के लिए संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समावेशी समाज का निर्माण, एक ऐसे समाज जहां किसी व्यक्ति को केवल इसलिए पीछे न रहना पड़े क्योंकि वो सुन या बोल नहीं सकता। साथ ही इसलिए हमें इस दिवस को महत्व देना चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों को भी जो सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आप

0: आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन सौर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बात अब एक ऐसे कवि के बारे में करने जा रहे हैं जिनकी कविता कागज पर नहीं उतरती थी बल्कि सुनने वाले के भीतर जोश, साहस और आत्मसम्मान की लौ जला देती थी। एक ऐसे कवि जिनके शब्दों में देशभक्ति थी तो वही समाज की सच्चाई को सामने रखने का साहस भी था। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी आज 23 सितंबर को पुण्य जयंती मनाई जा रही है। और ये दिन हिंदी साहित्य के लिए विशेष है क्योंकि आज के दिन वर्ष 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें। साथियों, दिनकर जी का बचपन संघर्षों के साथ बीता था। आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन कठिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व को कमजोर करने के बजाय और मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी लेखनी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया। उनकी कविता में देश की पीड़ा थी, स्वतंत्रता की आकांक्षा थी और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की का साहस था। इसलिए उन्हें देश प्रेम से राष्ट्रकवि भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, दिनकर जी की लेखनी की विशेषता ये थी कि उनकी कविताएं पढ़ने या सुनने के समय ऐसा लगता है जैसे शब्द हमारे भीतर की ऊर्जा पैदा कर रहे हों। उनकी प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी में उन्होंने महाभारत के महान पात्र कर्ण के जीवन और संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं कुरुक्षेत्र में युद्ध, शांति और मानवता जैसे गंभीर प्रश्नों पर विचार किया। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृत के चार अध्याय जैसी कृतियां शामिल हैं। दिनकर जी की कविता में एक और वीर रस की शक्ति दिखाई देती थी तो दूसरी ओर प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाएं भी उनकी ही गहराई से दिखाई जाती थी। दोस्तों, आज हम दिनकर जी को याद कर रहे हैं तो हमें

ये भी सोचना चाहिए कि उनकी रचनाएं आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शायद परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपने भीतर के साहस को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ राष्ट्रकवि दिनकर जी को का कौशल को शत शत नमन। साथियों, तो ये थी बातें दिनकर जी के बारे में, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक साथियों। दोस्तों, क्या स्वच्छता की जिम्मेदारी स्वच्छता कर्मी या सरकार प्रशासन की ही होती है? हम कभी रास्ते पर कचरा देखकर उसे साफ करने की या स्वच्छता कर्मी को सूचना देने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें लगता है स्वच्छता का हमारा काम नहीं, सिर्फ हमारे घर तक सीमित है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पर ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार घर आंगन हमारा है और उसे साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो ये शहर, देश, रास्ते सब हमारे हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी हम सभी की है। और जिस तरह व्यक्ति ये समझ जाएगा, हमारा देश पृथ्वी अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। और इन आदतों में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में युवाओं का सबसे बड़ी संख्या है। हमारा देश युवाओं का देश है, तो यह जिम्मेदारी युवाओं पर बढ़ जाती है और जो काम युवा करते हैं वो जिम्मेदारी पूरी तरह से संपन्न होती है, क्योंकि युवा केवल समाज का हिस्सा नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज युवा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, नई तकनीक से जुड़े हैं, कॉलेजों या संस्थानों में सक्रिय हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ये तय कर लें कि सड़क पर कूड़ा ना करने देंगे, कचरे को डस्टबिन में डालेंगे, घर के कचरे को उचित स्थान पर डालेंगे, प्लास्टिक की बोतल की जगह पुनः उपयोग होने वाली बोतल अपनाएंगे, मोहल्ले में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, तो ये जिम्मेदारी और आगे बढ़ जाएगी। साथ ही नदी तालाबों में कचरा नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और स्वच्छता के प्रति अभियान से जुड़ेंगे, खुद भी स्वच्छता फैलाएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो फ्रेंड्स, अपने आसपास के सड़कों पर स्वच्छता रखें और देश को स्वच्छ बनाएं। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ हमारे इस विषय पर बातें यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको पता है कि आप अपने मंजिलों के मुकाम को हासिल कर पाएंगे या फिर सिर्फ आज के कल्पना में रह जाएंगे? दोस्तों, कहते हैं भविष्य अचानक नहीं बनता, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तैयार किया जाता है। हम अक्सर कहते हैं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से समय पर सभी काम करेंगे और कल से अपनी आदतें बदलेंगे, लेकिन क्या कल कभी आता है? और ये जो कल है वो कब आज बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, कब जो आज का समय है वो हमारा बीत जाता है। दोस्तों, हर समय समय जाता रह रहा है, समय को हम रोक नहीं सकते, इसलिए बेहतर भविष्य की तैयारी हमें आज से शुरू करनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो हर दिन अब ईमानदारी से पढ़ाई को देना चाहिए ताकि वर्षों को मजबूत बना सके। और अगर आप युवा हैं तो नई तकनीक सीखना, अपने कौशल को बढ़ाना और अपने समय का सही उपयोग करना आपको दूसरों से अलग पहचान दे सकता है। और जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, जो आपके जीवन का एम है, उसे पाने के लिए हर रोज कोशिश करना। लेकिन भविष्य की तैयारी सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं है, हमें अपने स्वास्थ्य, व्यवहार, सोच और चरित्र को भी मजबूत बनाना

होगा। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया और आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बना। दोस्तों याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं आती, कई बार रोज के छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज के समय में जितने भी लोग ऊंचाइयों पर हैं, वो हमेशा से शुरुआत से प्रयास करते हैं, इसलिए हमें भी आज से अपने कल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना होगा। इसी बात के साथ अब अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी की ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बाल संग कार्यक्रम में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और साथ ही अपने कार्यक्रम के साथ जुड़कर खूब इंजॉय भी करेंगे, है ना बच्चों? बच्चों ये चंद लाइनें खास आपके लिए है। नन्हा सा दिल उमंगों के संग, नन्हा सा दिल उमंगों के रंग, आओ जुड़ो हमारे संग, पढ़ाई लिखाई से ही खुलेगा किस्मत का द्वार, पढ़ाई लिखाई से ही खुलेगा किस्मत का द्वार, चलो मचाते हैं बाल संग में धूम बार बार। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी अर्चना दी और बाल संग कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज का सफर बहुत ही मज़ेदार है और शिक्षाप्रद भी रहने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं आपके साथ ढेर सारी मस्ती और देने वाले हैं ढेर सारी जानकारियाँ। बच्चों आप सभी के लिए सबसे कठिन टास्क क्या होता है? मुझे पता है कि ये जो स्कूल से होमवर्क मिल जाता है ना, ये बहुत कठिन चीज़ है। भाई बच्चों को लगता है कि अभी तो हमने पढ़ाई करी तब तक होमवर्क भी मिल गया, लेकिन बच्चों इसे बोरिंग मत बनने दीजिए। यदि आप इसको एक गेम की तरह लेंगे ना, तो बहुत आसानी से आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर पाएंगे और फिर अगले दिन स्कूल में आपको शाबाशी ही मिलेगी। तो बच्चों इसके लिए आपको पता है क्या करना है? तो इसे मतलब बोरिंग समझने के बजाय होमवर्क को आपको क्या करना है, गेम की तरह समझना। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, स्कूल से आप आए ठीक है, उसके बाद आप अपने ड्रेस को चेंज कीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से हाथ मुंह साफ करिए और उसके बाद ही खाना खाइए और हैंड वॉश तो करना बिल्कुल मत भूलिए, है ना, खाना खाने से पहले। और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, है ना, मतलब आराम करिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि थोड़ी देर के बाद उठिए और रिलैक्स होकर के अपनी सारी जो ज़रूरत की बुक्स हैं, यानी जिस जिस सब्जेक्ट में आपको होमवर्क मिला है, और ये और पेंसिल कलर बॉक्स सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। और सबसे खास चीज़ बच्चों कि पढ़ने के लिए आप ऐसे जगह पर पढ़िए जहाँ एकदम शांति हो। ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल पास में रखा हो, अगल बगल खिलौने रखे हों, आप ऐसी जगह पढ़ने बजाय बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप स्टडी रूम में ही पढ़िए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि एक रूम अलग से पढ़ने का हो, तो एक ऐसे जगह पर बैठिए जहाँ पर शांति हो, यानी वहाँ पर कोई भी शोरगुल ना हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे होमवर्क जो आपको जो भी होमवर्क मिला है स्कूल से, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि आज हमें किस सब्जेक्ट में कितना कितना क्या करने के लिए मिला है ना। उसके बाद सीरियल नंबर से होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। और यदि आपने जैसे आधे घंटे पढ़ाई की

एक सब्जेक्ट का होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों आपको पता है क्या करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि थोड़ा सा खेलिएगा जरूर, क्योंकि जब आप होमवर्क पूरा हो जाएगा ना तो देखिए आपको किसी तरह का टेंशन तो रहेगा नहीं, आपके मम्मी पापा भी आपको नहीं डांटेंगे और अगले दिन तो टीचर शाबाशी देंगी ही। इसलिए बच्चों पढ़ाई के साथ साथ देखिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही रहेंगे आप ना तो भी बोर हो जाएंगे, और सिर्फ खेलेंगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। तो दोनों चीज़ों में एक सामंजस्य बना कर रखिए, है ना। तो दोनों चीज़ों में आप सामंजस्य बना के चलेंगे ना तो आपके लिए जो पढ़ाई का होमवर्क है ना वो एक टास्क नहीं बल्कि वो एक गेम लगेगा। तो बच्चों यदि आप इसी तरह से आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपने होमवर्क को कंप्लीट किया तो यकीनन आपको एग्जाम्स के टाइम में भी बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है। तो बच्चों तो क्यों ना मैं भी आपके मूड को फ्रेश किए देती हूँ और सुनती हूँ इस गीत को आपके साथ।

0: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्ध एनटीपीसी रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बाल संग में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये गीत बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबने खूब जम के नाचा है ना बच्चों। और अब बात करते हैं बच्चों स्वच्छता पर, यानी कि साफ सफाई पर। बच्चों पता है आपको इसमें कौन सा समय चल रहा है? बच्चों इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 17 सितंबर 2026 से शुरू है और 2 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। तो बच्चों देखिए, ये पखवाड़ा क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि हम कहीं ना कहीं स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी भारत सरकार को ये पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो बच्चों इसके लिए हम सभी को जागृत होना पड़ेगा, हम सभी को एक्टिव होना पड़ेगा कि हम सभी लोग साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। अब बच्चों जैसे आप ही को देखिए, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है पेंसिल को छीलते जाएंगे, छील छील के उसको पूरा फैला देते हैं गंदगी, है ना। उससे भी देखिए, अगर पेंसिल आप बर्बाद कर रहे हैं तो पेंसिल किस चीज़ से बनती? पेड़ों से ही ना बनती है। तो पेड़ जब आप पेंसिल बर्बाद करें, ऐसा मतलब आप पेड़ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यानी आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई मत करिए, पढ़िए जितना ज़रूरत है उतनी ही पेंसिल को छीलिए, और छीलने के बाद उसे साफ करके उसे कचरा में डालिए। ऐसा नहीं कि घर में फैला दिया पूरी चीज़ें। तो बच्चों मैं ये कहूँगी आपसे कि जब भी आप जैसे सबसे चीज़ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्वस्थ रहना है ना, तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप रोज़ अपने शरीर पर साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। जैसे बच्चों आपको रोज़ नहाना चाहिए, है ना, साफ कपड़े पहनिए, और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करिए, और हैंड वॉश का प्रयोग जरूर करिए, और हैंड वॉश नहीं तो कम से कम साबुन लगा करके ही खूब अच्छी तरह से हाथों को मल करके साफ करिए, ताकि जब आपका साफ हाथ साफ होगा और उसके बाद आप खाना खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह के खराब बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, कीटाणु नहीं जाएंगे, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। और सबसे खास बात बच्चों, जब भी आप खाली समय में हों, अपनी माँ के साथ मिल करके घर की साफ सफाई में भी विशेष ख्याल रखिए। बच्चों ये अच्छी आदतें हैं ना, यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और साथ ही कोशिश करिए कि घर का पका हुआ भोजन ही करें, मतलब घर का बना हुआ खाना खाने की कोशिश करें, और ये जो फास्ट फूड है ना उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए बच्चों। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहना है आपको, आपको भाई पढ़ाई करनी है, आपको खेलना कूदना भी है, आप कैसे स्वस्थ होंगे? जब आपके भोजन आपके शरीर में सब तरह के पोषक तत्व जाएंगे तभी तो ना। अब पता चला आपने सिर्फ मैगी खाया और आप दिन भर फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपके शरीर में पौष्टिक तत्व तो कुछ गया ही नहीं, तो फिर इससे आपका ब्रेन भी नहीं शार्प होगा, आप स्वस्थ भी नहीं रहेंगे, अक्सर आप बीमार हो जाएंगे। तो यदि आपको बच्चों स्वस्थ रहना है तो आप सब कुछ खाइए,

0: नाम कुमारी कृष्णा है और मैं एक शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एकता में शक्ति। एक गरीब किसान था, उसके चार बेटे थे। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उनके झगड़े से बहुत परेशान था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने सोचा, यदि मेरे चारों बेटे ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इनके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। उनको समझाने के लिए उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने लकड़ी का एक छोटा सा गट्ठर चारों बेटों को दे दिया और बारी बारी से उसे तोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसका कोई भी बेटा लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं सका। अब किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी चारों बेटों को दी। उनसे पुनः तोड़ने के लिए कहा। सभी बेटों ने अपनी अपनी लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। किसान ने उन्हें समझा, बेटों जब ये लकड़ियाँ गट्ठर के रूप में एक साथ थी तो तुम लोगों में से इसे कोई भी नहीं तोड़ सका, लेकिन जब इन्हें अलग अलग कर दिया गया तो तुम सभी ने आसानी से तोड़ दिया। लकड़ियों को गट्ठर की भांति ही यदि तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन यदि तुम अलग अलग रहोगे तो सभी तुमसे शत्रुता करेंगे और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकेंगे। अब बात बेटों की समझ में आई और वे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद। नमस्ते।
1: नमस्कार, मेरा नाम श्रेया मिश्रा है। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार एक गुरुजी के पास कई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुजी अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद की परीक्षा लेना चाहते थे ताकि वे देख सके कि किसने वास्तव में ज्ञान को समझा है। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और हर एक को मिट्टी की बनी चिड़िया देते हुए आदेश दिया, पुत्रों इस चिड़िया को ले जाओ और इसे किसी ऐसी जगह जाकर नष्ट कर दो या छिपा दो जहां तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो। सभी शिष्य अपनी अपनी चिड़िया लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। पहला शिष्य एक घने जंगल में गया, झाड़ियों के पीछे छिपा और चिड़िया को नष्ट कर दिया। उसने सोचा, यहां मुझे कोई नहीं देख रहा। दूसरा शिष्य एक अंधेरी गुफा में गया और वहां चिड़िया को छोड़ आया और उसने सोचा, यहाँ तो घोर अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा मुझे। अन्य शिष्य कई तहखाने में गया तो कोई ऊंचे पहाड़ के पीछे गया। सबने अपनी समझ से ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई इंसान मौजूद ना हो। शाम को सभी शिष्य लौट आए और गर्व से बोले, गुरुजी हमने आपका दिया हुआ कार्य पूरा कर लिया, हमें किसी ने नहीं देखा। लेकिन ए शिष्य वह चिड़िया को वैसा का वैसा ही वापस ले आ गया। अन्य शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन गुरुजी ने उससे शांति से पूछा, बेटा क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो? शिष्य ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की, मैं गुफाओं में भी गया, घने जंगलों में भी गया और एकांत में भी गया, लेकिन जहां भी गया कम से कम दो लोग मुझे हमेशा देख रहे थे। एक तो ईश्वर जो हर जगह मौजूद है और दूसरा मैं खुद, मेरी अपनी अंतरात्मा। मैं स्वयं से कुछ को कैसे छुपा सकता हूँ? गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और सबको समझाए कि ये जीवन का असली ज्ञान है। हम दुनिया से छिपकर कोई गलत काम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर और हमारी अपनी आत्मा से कुछ छिपा नहीं सकते। जो व्यक्ति इस बात को याद रखता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं चलता है।
2: मेरा नाम देवयानी है।

0: मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चे ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते। अच्छे बच्चे रोज नहाते, रोज नहा के खाना खाते, खाना खा के पढ़ने जाते।
1: मेरा नाम सेरिया है, मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। नानी आए लीली साड़ी पहन के लाई, मीठा मीठा लीची लाए, लीची सबको मन भाया। नानी आए लीली साड़ी पहन के लाए, मीठा मीठा लीची लाए।
2: मेरा नाम परी मौर्य है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हम सब सुन एक वन की एक माई धरती, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धोखे में है। सींचे गए एक जल से हम, पाले हुए हैं झूल झूल का पल्लों में हम एक पवन के। सूरज एक माया जिसकी किरण उनकी कली खिलाती।
3: बच्चों, अभी हम लोगों ने बच्चों के मुख से सुना। बच्चों ने कुछ बच्चों ने कहानी सुनाई और उसके बाद कुछ बच्चों ने कविताएं भी सुनाई। और बच्चों, ये सब के बाद फिर अब चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और हम सब साथ में सुनते हैं इस गीत को।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

बच्चों आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं कि यदि आप अपना हर काम सही समय से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप झूठ बोलने से बच जाएंगे। बच्चों पता है सच बोलना हमें मजबूत और सच्चा इंसान बनाता है। और हाँ बच्चों, एक बात आपको भी सच्ची सच्ची बताती हूँ कि सच बोलने के बाद ना जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों सच बोलने की आदत बनाइए ताकि आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाइए। और बच्चों पता है सच बोलने से हमें डर भी नहीं लगता है किसी से। तो बच्चों मिल कर रहे और सच का साथ निभाएं। इतना ही नहीं, बच्चों बाल संघ कार्यक्रम में जुड़ने वाले हर बच्चे पर एक प्यारी सी मुस्कान आए। बच्चों अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं आपकी अर्चना दी जा रही हूँ। बच्चों जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के शुभारंभ बदे आयोजित कार्यक्रम में शामिल भयले। ये मौका पर वहां के कहले कि भारत टैक्सी का हिस्सा बने वाले टैक्सी ड्राइवर के 5,00,000 रूपया लेकर सामाजिक सुरक्षा का कवरेज मिली। श्री योगी इहो कहले कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में लघु और सीमांत किसानन के दिहल जाए वाला लोन पर ब्याज का दर कम कई गई बा।
1: हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके मार्गदर्शन में और आदरणीय गृह मंत्री जी जिनके नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर एक नई गति पकड़ते हुए भारत की समृद्धि का प्रतीक बन रहा है। जिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, थ्री व्हीलर के बारे में, अब वह रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर वे भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और बदले में उनको सामाजिक सुरक्षा की कवरेज मिलेगी 5,00,000 रूपये की।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोलू शामिल भयले। ये मौका पर गोरखपुर और चित्रकूट के साथ ही प्रदेश के कई जिला में कार्यक्रमन का आयोजन कई गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आज 8 मरीज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर 2018 में ये योजना का शुभारम्भ कैले रहा। दुनिया का सबसे बड़हन सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बनी गई बा। प्रधानमंत्री कहलावे की योजना से इलाज के खर्चा में रिकॉर्ड बचत भइल हवे और गरीब और मध्यम वर्ग के फायदा मिलल हौ। एगो रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 30,00,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर रहा हवे। यात्रा जनसेवा से देश सेवा का मंत्र और लगातार प्रतिबद्धता से प्रेरित हो। सेवा और सुशासन के नजरिया से प्रेरित होके सरकार 2047 ले विकसित भारत बनौले के दिशा में लगातार काम कर रहा हो। समावेशी विकास आ सामाजिक सशक्तिकरण के जरिया से ई समर्पण लोगों के जिंदगी में बदलाव ला रहा हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर एगो खास रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना ने देश के करोड़ों पात्र किसान परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। 24 फरवरी 2019 से लागू इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रूपए की राशि 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: किसान राजेंद्र मोहन लाल श्रीवास्तव ने बताया कि किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित हो

0: गई है।
1: मैं किसान निधि से बहुत खुश और हमेशा जो है प्रसन्न रहता हूँ। किसान निधि से हम लोगों को फसलों में यूरिया खाद डालने में काफ़ी मदद मिलती है और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे कि कम से कम हम किसानों के बीच विषय में आपने इतना सोचा। इसके लिए जो है हम लोग कोटि कोटि आपको प्रणाम और धन्यवाद करते हैं।
0: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से किसानों के खातों तक पहुँच रही यह सहायता कृषि क्षेत्र में पारदर्शी और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
2: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का कार्यकाल बढ़ा दिया गई हो। उनकर दूसर का कार्यकाल 16 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई। ये कार्यकाल 5 वर्ष चाहे 70 वर्ष का उम्र पूरा हो खेले जो उन्हें पहले हुई उहे प्रभावी रही। समाचार पूरा भई, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात पुरुष का शव प्राप्त हुआ है जिसका हुलिया इस प्रकार है। प्राप्ति स्थान ग्राम सिरसोती थाना बीजपुर। इनका हुलिया इस प्रकार है। लंबाई 5 फीट 6 इंच और इनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। उम्र लगभग 35 वर्ष। जिस किसी से भी यह संबंधित हो कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार पवन कुमार पुत्र भोला प्रसाद केसरी निवासी ग्राम सिरसोती थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र जो दिनांक 1 अगस्त 2015 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष लंबाई 5 फीट 1 इंच सांवला रंग गोल चेहरा इकहरा मजबूत जिस्म। इनके बाएं गाल पर तिल का निशान है। इन्होंने पूरे बांह का शर्ट फुल पैंट और पैर में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुज पुत्र गोरालाल निवासी ग्राम खिरीटहा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र जो दिनांक 25 अगस्त सन 2015 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष लंबाई 162.5 सेंटीमीटर सांवला रंग लंबा चेहरा इकहरा बदन तथा मंद बुद्धि। इन्होंने जीन्स पैंट चेकदार शर्ट तथा पैर में जूता पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू कुमार पुत्र दरोगा सिंह निवासी ग्राम दुमहान पोस्ट रजखड़ थाना दुद्धि जनपद सोनभद्र जो दिनांक 19 मार्च 2015 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 14 वर्ष लंबाई 4 फीट गेहुआ रंग गोल चेहरा इकहरा बदन मंद बुद्धि। इन्होंने खाकी पैंट और नीला शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। भोला भैया राम राम हो।
1: राम राम गुलाबो बहन।
0: और बताओ का हाल समाचार बा। बड़े दिन के बाद देखा भेंट मुलाकात होत बा। देखा हम सोचत भी रहनी आज सुबह से ही कि आज भोला भैया से देखा भेंट मुलाकात बड़ा दिन बाद होत बा। तो देखा आज बैठकी में अपन भेंट मुलाकात हो भी गई और कितना बढ़िया बात बा कि आज आवत रहनी है भोला भैया तो अपन बरखा बुन्नी भी देखा भगवान दो भी प्रसन्न होगा ललन है।
1: बिल्कुल
0: और देखा
1: बिल्कुल
0: हम लोग
1: बिल्कुल।
0: इंतजार भी करत रहनी है अपन तनी सा पानी के बौछार पड़े अपने धरती माई पर अपने धान बदे बड़ी अच्छा रह।
1: बिल्कुल। धान के कुछ क्यारी में ऐसा भी रहे कि दरार पड़ रहे धीरे धीरे। अब ओके खातिर जनबा की पानी बहुत जरूरी रहा।
0: बिल्कुल।
1: और लेकिन इस समय जनबा की धान की रोपनी से लेकर के और अब तक में जनबा की दौ की इतना दृष्टि ठीक ठाक हो,
0: बिल्कुल।
1: जिसे कहा जाए कि भगवान जी लाठी लेके जनबा की खेत की रखवारी करत हो। तैसे निश्चित रूप से बहुत बहुत अच्छा हुआ।
0: बिल्कुल।
1: और हम लोग का धन्यवाद दल जी भगवान जी के, खुद जो है कि अच्छा हो रहा हो सब।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: इसने में जो उनका ईश्वर के देवल जितना भी धरती पर सब कुछ हो, वो सब के जौना से जौन कुछ बन सके ओकर देख रेख कर बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा है जैसे अपने अभी हम लोगों पंचायती में जब जुट मतलब बातचीत हम लोगों करत हैं लेकिन अब समस्या का अगर बात करल जाए ना तो देखा समस्या हम लोगों जब इंसान के रूप में जन्म लेवल गल है तो समस्या देखा हर ऐसा के हो नहीं बा जिकरे जीवन में समस्या ना हो।
1: बिल्कुल।
0: और समस्या देखा हुई तबे सुख का हम लोगों की अनुभूति हुई। अगर परेशानी नहीं हुई तो कोनो भी सुख का अनुभूति नहीं हुई। अगर देखा हम लोगन सुखी सुखी रह जाए तो दुख का मतलब यानी
1: नहीं
0: सुख का महत्व ही नहीं समझ में आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यही से कहल जाला हम लोग तो देखा इंसान के रूप में ही अपन कोनो भी परेशानी बोल बतिया लेते हैं लेकिन जहां हम लोगन के पशु जवा लोगन के बात होला ना बोला भैया
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल।
0: यह लगला कि जे अनबोलता जीव बा हमरे संगे वो अपन पूरा समय हमरे साथ बितावत बा हमरे भरोसे उनकर खाना पीना उठना अपन गौमूत्र या गोबर करना या हर चीज हम लोगों के इंसान के ही भरोसे रहला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम लोगों का भी जिम्मेदारी हो जाला कि उनकर देखभाल जे प्रकार से अपने घर का सदस्य लोगों का हम लोगन करल जाला उही प्रकार से अपने पशु चुवा लोगों के भी ध्यान देवल जाए।
1: बिल्कुल। अगर थोड़ा सा पानी पड़ जाए बिस्तर पर तो आदमी ऊपर बैठ नहीं सके, लेट नहीं
0: बिल्कुल।
1: सके। और वहीं पर अगर मवेशी लोन के कीचड़ में रखे के होके तो
0: हाँ
1: उनके साथ का गुजरत हुई।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल।
1: मजबूरी में तो भाई बांध देवल जाला, नहीं तो छोड़ दी, छूटा तो जोन बाकी अपन अच्छा जगह पर जाके बैठित लो।
0: एकदम बिल्कुल
1: लेकिन बांध करके जब अरिया हो जगह रखल जाला तो पर हम लोग के ध्यान देने की जरूरत है।
0: एकदम। देखा ये समय हम लोगों के अगर ध्यान देवल जाए ना तो हम लोगों का जो आमदनी का जरिया देखा हम लोगों का कहा किसान है तो खेती किसानी के बाद हम लोगों का जो आमदनी का जरिया होला ये पशु चोवा लोगों से होला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर पशु हम लोगों का स्वस्थ हुए तो दूध दिए दूध से अगर बिक्री करब तो 4 पैसा की आमदनी मिली। लेकिन वह पशु का अगर हम लोगों देखभाल सही तरीका से न करल जाए जैसे आप कहत हुआ कि उनके गोबर पानी में छोड़ देवल जाला तो उनके जो पैर का उनमें मतलब कई तरीके का
1: हाँ,
0: कीटाणु
1: दवा
0: प्रवेश कर
1: पड़े।
0: जालन
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: ऐसे हम लोगन फिटकरी से उनकर पैर जोन बा ओके हमेशा साफ करल जाए
1: तो निश्चित रूप
0: ताकि
1: से वही में जोन बाकी अब जिसे पैर में खंगमा हो जाए और वही प्रकार जोन बाकी उल्टा सीधा अगर पानी पिया दल जाए,
0: बिल्कुल।
1: चपका हो जाए, तो ये तरीके तरह तरह की बीमारी। और जवन आप कहते हैं कि जोन बाकी सीधे उनके दूध बेच करके जौन आमदनी होला वो तो हल्ले हो, लेकिन साथ साथ जौन हम लोग खेती करते हैं ना उनमें भी अगर जानो पशु के अगर गोबर के ना पड़े तो समझ जाए कि हम लोग खेती भी कोई काम के नहीं है।
0: बिल्कुल। खेती के साथ साथ अपन माटी माई भी

0: स्वस्थ हो जाइए। अगर गोबर का खाद भैया पड़त बा, गौमूत्र पड़त बा, तबे अपन माटी माई भी स्वस्थ ही, अपन धरती माई तबे खुशहाल रही है। कहे कि अगर गोबर न पड़ी, गोबर का खाद गौमूत्र न पड़ी, तो रासायनिक खाद के लोग प्रयोग करी, और वो रासायनिक खाद कहीं न कहीं हम लोगन के माटी माई के अस्वस्थ बनावत बा। उसे उपजल जो अनाज हम लोगन खात हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगन के शरीर के बहुत हानिकारक तत्व प्रदान करत बा। तो ऐसे हम लोगन सचेत हो जाए अभी से भी, कि जेकरे वजह से हम लोगन के चार पैसा के आमदनी होत बा, जेकरे वजह से हम लोगन का द्वार को शोभा बढ़त बा भैया, ओकर सुरक्षा हम लोगन की तरीका से करल जाए।
1: तो निश्चित रूप से तो हम लोग की जनबा की बहुत सावधानी बरत करके इनके सूखा स्थान पर रखें।
0: बिल्कुल।
1: और जहाँ अब रात भर जिस तरीके मौसम के लिए होता है, इसने स्थिति में लोग छाया में करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: साथ साथ जहाँ पशु बांधल जा रहा हम, वहाँ पर जनबा की पानी की निकास हो, जौन मुतारी की बात हो ओकर जनबा की निकास हो, ताकि जमावट ना हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कीचड़ में ना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: और साथ साथ जनबा की उनके सुबह होते ही बहुत लोग किसान भाई लोग ऐसा होलन, पशुपालक भाई लोग, क्योंकि बांधले हवन ऐसी जहाँ गंदगी है वहाँ पर मक्खी वगैरह बहुत लगला, बड़ा बड़ा मक्खी डंस जी के कहल जाला, वो भी रहला। तो ओजग से मच्छर तो तमाम है ही हम, तो अगर उनके साथ सवेर खोल देवल जाए तो माछी से बचे खातिर कम से कम पेड़ के नीचे हो जाइए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कहीं छाया में हो जाए, जन बाकी उनके काटी नहीं और जन बाकी मचल रही है।
0: बिल्कुल। साथ में उनके जो पिए वाला पानी हम लोगों ने देवल जला, वो हमेशा साफ सुथरा देवल जाए। कहे कि अगर जो पशु हम लोगों के प्यासल रहलन, अगर प्यास लगल बा, तो कहीं अगर हम पानी साफ नहीं देते हैं, तो कहीं भी पानी अगर देखत हम, वो गंदा पानी जाके पी लेवलन, उसे देखा उनके कई प्रकार के बीमारी हो जाला। जैसे उनका जो दूध भी बा, वो प्रदूषित हो जाला, कहीं ना कहीं ओकर असर दूध में भी आ जाला। तो हम लोगों के ध्यान देवे के बा कि अपने पशु के दिन भर में 3 बार कम से कम साफ पानी उनके देवल जाए, उनके नाद के हमेशा हम लोगों धो के साफ सुथरा करके ही उनका चारा लगावल जाए, और चारा के बाद ही उनके दाना देवल जाए।
1: और निश्चित रूप से जब देखल जाला कि अगर तीता चीज खियावल गिल हो पशु के, चाहे बकरी के, चाहे गाय के, चाहे भैंस के, तो अगले दिन जौन दूध दे तो तिकच लगी, तो वो एकदम स्पष्ट हो जाला कि जौन खाई वही दूध
0: दे। बिल्कुल बिल्कुल।
1: इस तरीके अगर दोष पूर्ण जौन बाकी आहार ले तो दोष पूर्ण दूध मिले हम लोग।
0: बिल्कुल। और देखा ये समय जैसे की अभी सितम्बर का महीना चलत बा, तो देखा बरसात में जुलाई से सितम्बर तक अपने पशु लोगों के टीकाकरण पर भी विशेष ध्यान देने के चाहिए। कहे की देखा सबसे खतरनाक होला गला घोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका, मुंह पका का टीका जुलाई के से पहले ही एक लगवा लेवे के चाहिए। कहे कि देखा अगर हम लोग मतलब टीका न लगवावल जाए तो उनके देखा कई समस्या का सामना करे के पड़ सकला। और देखा एक और जो टीका बना वो पशु अस्पताल में बिल्कुल फ्री में भी लगावल जाला। और देखा कीड़ा मार जो दवा कृमि नाशक जो होला वो अपने पशु लोगों के हर 3 महीना पर हम लोगों के देवे के चाहिए।
1: कहे की जो
0: पे इंतजार भोला भैया नहीं करे के चाहिए कि अभी मतलब 4 महीना 5 महीना हो जाए तब दें, 3 महीना अगर होत बा तो आप एक जो कृमि नाशक दवा बा ओके जरूर दे दे, ताकि उनके कीड़ा का बीमारी पेट में न हो।
1: और जौन भी कर्मचारी हवन पशु संबंधित, वो लोग तो जनबा की खोज खोज के काम कर ही रहा हूँ टीकाकरण।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो पशुपालक हन उनकर भी जिम्मेदारी है कि पशु अपने पास रखें, बांध करके रखें, और जनबा की जो भी टीकाकरण करे खातिर जनबा कर्मचारी पहुंचत हों उनके सूचित कर देवे कि इतना टाइम तक जनबा की हमारे यहाँ पशु रह पाई है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और अगर आप का कहते हैं तो जो हमें थोड़ा अगर प्रतीक्षा भी करे हो, प्रतीक्षा करके टीकाकरण करा ले चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखा बात बात कही हम लोग की बहुत बा भैया और हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा इतना बढ़िया जो बातचीत होत बा ना, तो हम तो कहते हैं कि आज अपने यही से संबंधित, यानी कि लंपी स्किन डिजीट जागरूकता ही बचाओ, डॉक्टर अनुभव सिंह जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी चोपन ब्लॉक से हम। अब देखा वो आज का फरिया के जानकारी देत हम।
1: हाँ।
0: हम लोगों भी इनकर जानकारी सुन लेवल जाए, लेकिन ओकरे पहले संदेश बा वो सुन लेवल जाए।
1: सुनाओ।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: पंच भैया लोग देखे हैं, हम लोग अपने कार्यक्रम में बुधवार के प्रत्येक बुधवार के हेलो किसान कार्यक्रम लेकर आईला। हेलो किसान के माध्यम से हम लोग जौन भी अपन किसान भाई लोग बाया या पशुपालक भाई लोग बा उनकर जौन समस्या बा ओकर समाधान करावे का माध्यम करीला अपने विशेषज्ञ भैया लोगन से। आज देखे हैं हम लोग उनकी स्टूडियो में हुआ डॉक्टर अनुभव सिंह साहब जो उनकी पशु चिकित्सा अधिकारी चोपन में आप हुआ और लंपी स्किन डिजिट से पशुअन का बचाव कैसे कर जाए, ओकर पहचान का बा, उपचार का बा, ओकर रोकथाम कैसे कर जाए, यही विषय पर आज हम लोगन का बातचीत हुई। डॉक्टर साहब आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब आजकल पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का चर्चा काफी होता, तो सबसे पहले हमारे पशुपालक भाई लोगन के बताएं कि बीमारी है।
2: हाँ, के सभी को नमस्कार। देखिए, लंपी स्किन डिजीज मुख्य रूप से एक वायरल बीमारी है
1: जी,
2: जो कि मुख्य रूप से गाय में देखने की मिलती है। हालांकि ये भैंसों में भी होती है लेकिन मुख्यतः ये गाय में होती है और ये संक्रमक वायरल बीमारी है
1: जी जी।
2: इसमें पशु की त्वचा पे गांठे या उभरे हुए गोल गोल घाव दिखाई देते हैं
1: जी जी।
2: और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें अचानक से दूध कम हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, बुखार होता है और कई गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी जौन बा पशुओं में होले का है, का एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकल है?
2: देखिए, जो ये बीमारी है ये लंपी स्किन डिजीज वायरस से होती है
1: जी जी,
2: और इसे एक प्रकार का कैप्री पॉक्स वायरस माना जाता है। अब सवाल यह है कि ये फैलता कैसे है।
1: डॉक्टर साहब एक फोन आएगा बा। हेलो,
3: बिजकिशोर यादव।
1: हाँ बिजकिशोर भैया, आपका स्वागत बा अपने कार्यक्रम हेलो किसान में। देखें आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुभव सिंह साहब, पशु चिकित्सा अधिकारी चोपन हुआ। आजकल पशुओं में देखे में आवता लंपी स्किन डिजीज का चर्चा होती है, रोग फैलता जोने के हम लोग गाँव में कहिला की महारानी माई निकल गए हैं।
3: शरीर में सर पूरा एकदम काला काला हो जाता है, चकता चकता।
1: हाँ, तो डॉक्टर साहब से अपन प्रश्न करें।
2: हाँ बताएं।
3: हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते।
2: नमस्कार, बताएं।
3: सर ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हम लोग के पशुओं में ज्यादातर पूरे शरीर में फोड़े टाइप का पूरा शरीर हो जाता है काला काला, और उसका और एक गले में जाता है गला खोटू टाइप का, इसका कौन सा ऐसा इलाज किया जाए डॉक्टर साहब जिससे हम लोग पशु स्वस्थ रहे।
2: देखिए, आपने अभी दो बीमारी का जिक्र किया, एक तो जो बीमारी है वो लंपी स्किन डिजीज है और दूसरा है गला घोटू। दोनों अलग अलग बीमारी है। जो गला घोटू बोलते हैं वो HS होता है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। पहले तो हम लंपी स्किन के बारे में भी इस वीडियो में आप हम बताएंगे पूरा, तो आप सुनेंगे तो इसमें आपको जो आपका सारा सवाल है सब कुछ इसमें हम बता देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा, जो आप गला घोटू की बात करें, ये एक बहुत ही जल्दी फैलने वाली और इसमें पशु में समय नहीं मिलता इलाज का, जल्दी से जल्दी इसमें पशु मर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने जल्दी आपको अगर पशु में बहुत तेज बुखार आ जाए, गर्दन के आगे सूजन आ जाए, तो तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना है, क्योंकि इसका कोई घरेलू इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के माध्यम से ही इसको ठीक किया जाता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक लगता है, सूजन के लिए इंजेक्शन लगते हैं, और इसमें देरी करेंगे तो आप पशु को बचा नहीं सकते।
3: अच्छा,
2: तो हाँ, और इसके मुख्य लक्षण क्या है, बुखार आना, नाक से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
3: घुरुट घुरुट आवाज भी आने
2: लगता है। हाँ बिल्कुल, आपको अजीब सी, क्योंकि रिस्पिरेटरी निमोनिया हो रहा है ना, तो इस वजह से बहुत आवाज आने लगेगी, और गर्दन के आगे आपको जो है दोनों पैरों के बीच से लेते हुए एक सूजन दिखाई देगी। तो अगर ऐसा लक्षण है तो उसमें घरेलू उपचार मत कीजिए, डॉक्टर को संपर्क कीजिए और इंजेक्शन ही बचाओ। इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो निश्चित रूप से वो उसको मरने मरना है।
3: अच्छा,
2: बिना उपचार के। और इसका अगर बचाओ तो मुख्य रूप से अगर साल में दो बार गला घोटू का टीका लगता है, अगर 6-6 महीने आप टीका लगवाते रहेंगे इसको, खास करके बारिश से पहले, खास करके भैंसों में
3: जी,
2: तो ये बीमारी से आप बचा सकते हैं। गला घोटू का टीका मार्केट में अवेलेबल, हमारे विभाग में भी आता है, अभी बरसात से पहले हम लोग लगाए भी हैं पूरे चौपन ब्लॉक में
3: जी जी सर,
2: तो आप टीकाकरण हमेशा करवाते हैं बरसात से पहले।
1: बीच किशोर भैया आप फोन कर लेने और जो आपका समस्या रहा हो और समाधान भल, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम लोगों ने बात करत ली है कि जो लंपी बीमारी बा तो ये एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलाला।
2: देखिए, मुख्य रूप से जो लंपी स्किन डिजीज है इसको शॉर्ट में LSD कहते हैं
1: जी,
2: ये बीमारी खून चूसने वाले कीट यानी कि कोई भी चाहे मक्खी, मच्छर, किलनी।
1: एक फोन और आएगा डॉक्टर साहब। हेलो
3: हेलो।
1: हाँ भैया, अपन नाम बताओ, मैं कहाँ से बोलत हूँ आप?
4: हम बोल रहे हैं ग्राम टेढ़ा से, दुधी कस्बा के बगल से।
1: आपका नाम का पड़ी भैया?
4: हमारा नाम पड़ जाएगा डॉक्टर एमडी यादव।
1: डॉक्टर एमडी यादव साहब, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखा डॉक्टर अनुभव सिंह साहब हम लोगों के साथ में हो।

0: चिकित्सा अधिकारी हमारे आप था जौन भी पशुअन से संबंधित कोनो अगर समस्या हो तो डॉक्टर साहब से प्रश्न करें आप।
1: अच्छा
2: हाँ बताएं सर।
1: हाँ सर, एक ठो हमारे पास जो है वो बछड़ा है, मैंने बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा अभी।
2: हाँ कितने महीने का?
1: 8 महीने का है। वो दिन भर तो बढ़िया अपने से बढ़िया चारा खाया, सब रस्सी पर बांधे हुए थे, टाइम को भी कुछ पता नहीं चला। सुबह देख रहे तो उसका हल्का पैर जो है बाएं तरफ का पिछला पैर जमीन पर नहीं ले रहा है भार।
2: अच्छा, एक पैर नहीं ले रहा है।
1: अब वो बेचारा घास कुछ नहीं खा रहा है।
2: अच्छा, देखिए ये इस समय एक बीमारी फैली हुई है जिसको लंगड़ी बुखार बोलते हैं। इसमें अचानक से,
1: बोलते हैं गांव देहात में।
2: हाँ गांव देहात में ही बोल रहे हैं उसको, ई फीवर बोलते हैं, इफीमेरल फीवर होता है ये, और ये वायरल रोग होता है। ये भी मक्खी मच्छर के सीजन में जब काटने से फैलता है, और इसमें 3 से 4 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है बिना किसी इलाज के। फिर भी अगर मान लीजिए कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो बुखार की जो दवाई आती है पशुओं के लिए, मेलोनेक्स प्लस करके आता है,
1: पैरासीटामोल है ना?
2: हाँ उसमें मेलोनेक्स प्लस आता है जिसमें कि मेलोक्सिकैम और पैरासीटामोल दोनों होता है। हाँ इसको आप 200 किलो पशु पे एक गोली देना होता है दिन में एक बार, तो प्रति, हाँ 200 दो कुंटल पे एक गोली दिन में एक बार दीजिए उसको, अगर वजन के हिसाब से सिर्फ 3 दिन के लिए। तो इतने और कोई एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं होती, इतने में वो सेटल हो जाता है।
1: तो बच्चा है तो 1/4 जाएगा मान लीजिए।
2: हाँ हाँ 1/4 जाएगा उसका, मान लीजिए उसके हिसाब से 50 किलो का होगा तो।
1: अच्छा अच्छा
2: ठीक है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, आप आज फोन के लिए अपने हेलो किसान कार्यक्रम में एक रेवदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम लोग बात करते ली है कि जो लंपी स्किन डिजीज बा, ये एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैला?
2: देखिए मुख्य रूप से जो लंपी स्किन डिजीज है
0: जी,
2: ये खून चूसने वाले कीट से फैलती है। इसका मतलब जैसे मच्छर, मक्खी, किलनी या अन्य जो कीट है वो इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
0: जी।
2: मान लीजिए एक कीट ने संक्रमित पशु का खून चूसा और उसके बाद वही कीट यानी कि मक्खी में जो मच्छर है दूसरे स्वस्थ पशु का खून अगर पीने जा रही है
0: जी,
2: तो यहाँ से वहाँ इन्फेक्शन फैलाने का काम ये कर रही है। इसलिए लंपी बीमारी को हम लोग मुख्य रूप से वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं
0: जी,
2: यानी कीटों से द्वारा फैलने वाली बीमारी। यही कारण है कि जिस क्षेत्र में मक्खी मच्छर या किलनी अत्यधिक होते हैं यह बीमारी फैलने का खतरा वहाँ ज्यादा रहता है
0: जी।
2: इसलिए इस बीमारी में केवल बीमार पशु का इलाज करना ही पर्याप्त नहीं होता, मक्खी मच्छर इत्यादि का भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और रास्ता इनका फैलने का होता है कि जो पशु के बीमार पशु से निकलने वाले स्राव हैं, जैसे उसके नाक से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, यूरिन से निकल रहा है
0: जी जी,
2: ठीक है, उसके द्वारा भी अगर एक स्वस्थ बीमार पशु से स्वस्थ पशु में यह बीमारी फैलने को मिलती है। इसलिए पशुशाला को साफ रखें, पानी जमा न होने दें, गोबर है और गंदगी का उचित निस्तारण करें, मक्खी मच्छर और किलनी का जो है नियंत्रण करें, और पशु चिकित्सक के सलाह से ही उचित उपाय करें। क्या कर सकते हैं आप कि आपके आसपास चूना का छिड़काव करें, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करें, फिनाइल का छिड़काव करें, या अगर आपके पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गया तो अगल बगल जैसे पैराथ्रॉइड्स आते हैं जिसको ब्यूटॉक्स बोलते हैं 1.25%, इसको 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करने से आप मक्खी मच्छर किलनी आदि को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई लोग कैसे पहचाने कि उनके पशुओं के लंपी स्किन डिजीज हो सकाला?
2: सबसे पहले तो जो लंपी का वायरस है
0: जी, जी
2: शरीर में प्रवेश करने के बाद ये तुरंत गांठ नहीं बनाता है। संक्रमण के बाद कुछ समय तक ये पशु सामान्य दिखेगा
0: जी,
2: अचानक से उसमें तेज बुखार आएगा लगभग 40-41 डिग्री सेल्सियस का, पशु सुस्त हो जाएगा, चारा खाने में रुचि नहीं लेगा, चलने फिरने में रुचि नहीं लेगा, दूध उसका कम हो जाएगा, आंखों से पानी आना, आंखों में लालिमा या सूजन होना, नाक से पानी आना, अत्यधिक लार आना, गर्दन के आगे वाले हिस्से में एक असामान्य से बड़ा सूजन होना जिसको हम लोग बोलते हैं प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट
0: जी,
2: दूध में तुरंत कमी आ जाना, ये सब कुछ लक्षण है जो आपको शुरुआत में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है जो इस बीमारी की पहचान है, गांठें होना
0: जी जी।
2: तो इसमें जब बुखार होने के लगभग सामान्यतः देखा जाता है कि 3 से 5 दिन बाद इसमें गांठें बनना चालू हो जाती हैं, हालांकि कुछ केसों में 10 से 12 दिन भी जा सकता है
0: जी।
2: गांठें दर्दनाक होती हैं, छोटे छोटे गोल उभरे हुए कठोर गांठें होंगी, शुरुआत में दाने होंगी, बाद में वो धीरे धीरे गांठें होने लगती हैं
0: जी।
2: गांठें जो होती हैं लगभग ये 0.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। विशेष रूप से ये आपके सिर में, गर्दन पे, पीठ, कंधा, पैर, पेट।

0: थन और पूंछ के आसपास दिखाई देती है।
1: जी जी
0: कुछ गंभीर मामलों में जो ये गांठें हैं मुंह नाक और श्वसन एवं पाचन तंत्र की अंदरूनी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी वो बाहर से नहीं दिखेगी, बॉडी के अंदर भी गांठें होती हैं।
1: जी जी
0: अब जब ये जो गांठ है ये फट जाती है तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। इससे आप पस आएगा, दुर्गंध आएगी, मक्खियां बैठेंगी जब सड़ जाएगा, जिसको मैगट इन्फेस्टेशन कहते हैं। यही कारण है कि जो घाव को साफ रखना और मक्खियों को नियंत्रण करना बहुत अनिवार्य है।
1: जी जी
0: कुछ पशुओं में देखा गया है कि पैरों में सूजन आ जाती है, थनेला के लक्षण भी आते हैं और दोनों पैरों के बीच में गर्दन के नीचे भी सूजन देखने को मिलता है। कुछ गांव में अबॉर्शन भी हो सकता है और अगर नर पशु है तो उसमें परमानेंट इनफर्टिलिटी यानी कि बचपन वाली समस्या भी देखने को मिलती है। गंभीर अवस्था में यह निमोनिया जैसे लक्षण भी कॉज करता है जो कि कभी कभी पशु की मृत्यु भी हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात कहते हो, तो सावधानी अपने पशुपालक भैया लोगन के रखे के चाहिए। अच्छा पशुपालक भाई लोगन के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहला कि का ये जवन लंपी स्किन डिजीज है ये इंसान में भी फैल सकला?
0: नहीं, देखिए लंपी स्किन डिजीज इंसान में बिल्कुल भी नहीं फैलती है, इसलिए हमारे पशुपालक भाई बहन इसमें घबराए नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके डर के कारण पशु को आपने बाहर छोड़ दिया।
1: जी जी
0: ठीक है। बीमार पशु को संभालते समय सामान्य स्वच्छता और जैविक सुरक्षा जो है उसका पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको बीमारी भले न हो लेकिन आप एक माध्यम हो सकते हैं यह जो बीमारी है स्वस्थ पशु से बीमार पशु में फैलाने के।
1: देखें डॉक्टर साहब एक और फोन आएगल बा। हेलो
2: हेलो, अरे भैया हम रामगढ़ से बोला था, राजा राम कनौजिया।
1: हाँ राजा राम कनौजिया भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। देखें डॉक्टर साहब आज लंपी स्किन डिजीज के बारे में बातचीत हो था हम लोगन का, जौन पशुअन में माई जी निकल जानी, महारानी माई गाँव में हम लोगन कहिला, तो कोनो प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब से करें।
2: भैया पप्पू भैया नमस्कार, आपसे यही कह चाहत है।
0: हाँ, बताएं।
2: कि भैया खुरफटा जब मौसिया के हो जाला तो ओकर इलाज का होकला भैया, जानकारी ले चाहती।
0: अच्छा देखिए जो आप बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका, इसको हम लोग FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज।
2: हाँ, जैसे खंगा जाना है।
0: हाँ तो इसमें सब घर में क्या कर सकते हैं, एक लाल दवा आती है जो कि लाल दवा आप कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। उसको आप एक सरसों के दाने के बराबर एक आप एक लीटर या दो यानी कि एक बाल्टी पानी में डालें, दो से चार दाने उसके, तो पानी हल्का गुलाबी हो जाएगा। उस पानी से पशु का पैर धोएं, पैर धोने के बाद उसमें आप एक लोशन आता है हीमैक्स करके या बीटाडीन वगैरह लगा सकते हैं,
2: इससे
0: माछी के लिए उसमें मैंने कहा एक हीमैक्स आता है HIMAX, हीमैक्स लगा सकते हैं, डीमैक का स्प्रे आता है, टॉपी की ओर स्प्रे आता है, ये सब वहाँ अगर स्प्रे करेंगे तो घाव भी ठीक हो जाएगा और वहाँ पे मक्खी भी नहीं लगेंगी।
2: और भैया जब मौसिया के लार चुए लगला जिसे जीभा कालन देहाती में,
0: हाँ
2: ओकर का इलाज हो?
0: हाँ देखिए जो मैंने दो जो आपने बीमारी बताई ये पैरों में भी समस्या करती है, मुंह में भी करती है, मुंह में भी आपके मुंह के अंदर जीभ पे छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, इससे लार निकलेगा और पशु कुछ खाने पीने में असमर्थ रहेगा। तो उसके लिए आप मुंह में आप क्या कर सकते हैं कि कोई दवाई तो लगा नहीं सकते ऐसी,
2: नहीं, नहीं,
0: एक पाउडर आता है बोरिक एसिड पाउडर, हर मेडिकल पे मिल जाता है बोरिक एसिड पाउडर, और एक आता है ग्लिसरीन, तो जो बोरिक एसिड पाउडर है इसको ग्लिसरीन में मिला के आपने पेस्ट बना लिया मलहम जैसा, इस मलहम को आप जीभ पे लगाएंगे मुंह के अंदर हाथ डाल के जहाँ जहाँ वहाँ लगाएंगे, उससे धीरे धीरे ये घाव ठीक हो जाएगा। और अगर ये पशु के पेट में भी चला जाता है तो इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। बोरिक एसिड के अलावा और कोई चीज आप मुंह में नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोरिक, हम लोग उसको बोलते हैं बोरोग्लिसरीन, जो कि ह्यूमन में एक बोरोलिन आता था पहले क्रीम लगाने के लिए ओठों पे, तो वही चीज है बोरिक एसिड पाउडर प्लस ग्लिसरीन।
2: और भैया एक और सवाल है कि मौसी के जब पेट झरे लागल, देहाती भाषा बोला है कि जब गैस बन के पेट झरे लागल ओकर का दवा बा भैया?
0: देखिए अगर पशु का पेट झर रहा है जिसको डायरिया आप कहना चाह रहे हैं, दस्त होना जो है, हाँ सबसे पहले तो इसको आप पेट के कीड़े की दवाई देंगे जो आपके सरकारी अस्पताल से जाके आप ले सकते हैं। पेट के कीड़े दवाई देने से अगर सही नहीं हो रही है तो मेट्रोकाइंड फोल्ड करके बोलस आता है, सिप्लॉक्स TZ करके बोलस आता है, वो आप एक गोली सुबह शाम 3 दिन देंगे तो सही हो जाएगा, 3 से 5 दिन। अगर फिर भी नहीं सही हो रहा है तो फिर जाके आप अपने नजदीकी अस्पताल पे डॉक्टर से संपर्क करें।
1: भैया देखा आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन जौन भी आपको समस्या रहा समाधान बल एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर साहब, देखें अगर कोनो पशुपालक भाई हुआ आ उनके पशुओं में लंपी का लक्षण दिखाई देता तो उनके तुरंत का करे के चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले हमारे तो किसान भाई बहन सबसे पहले तो घबराएं नहीं
0: जी,
1: और पहला कदम ये करें कि जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दें
0: जी।
1: उसके बाद अपने दूसरा कदम ये है कि आपके आसपास नजदीकी पशु चिकित्सालय है वहां संपर्क करके वहां पर डॉक्टर साहब को बताएं कि ये समस्या है।
0: जी जी।
1: तीसरा, पशु को आराम दें, साफ सूखा हवादार जगह पर रखें, पशु को पर्याप्त साफ पानी दें, उसकी पसंद का पौष्टिक और आसानी से पचाने वाला खाना दें, त्वचा में जो घाव रखा है उसको साफ रखें और पशु चिकित्सक से सलाह से ही उस पर कुछ दवाई लगाएं। मतलब
0: जी जी।
1: उसके बाद जो आपका कीट नियंत्रण का कार्य करें, जैसे पशुशाला और उसके आसपास जो मक्खी मच्छर है उसको नियंत्रित करने के लिए छिड़काव करें
0: जी।
1: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ये वायरल बीमारी है तो पशुपालक अपने आप एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स या कोई इंजेक्शन दवा शुरू न करें। यह वायरल बीमारी है तो मुख्यतः इसमें जो लक्षण के हिसाब से इलाज किया जाता है, न कि कोई इसका स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है कि यही दवाई देके ठीक हो जाएगा।
0: जी जी।
1: इसलिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
0: अच्छा, का लंपी का कोनो विशेष दवा होला जोने से पशु अपन ठीक हो सकला?
1: नहीं, देखिए लंपी एक वायरल बीमारी, इसलिए इसकी कोई एक विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है
0: जी जी,
1: जिसको कि हम हर पशु को देकर तुरंत खत्म कर सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पशु का इलाज नहीं होता
0: जी।
1: इसीलिए शुरुआत में ही सबसे पहले पशु चिकित्सक का संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर फिर भी किसी कारण वाला आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सालय जाने में असमर्थ हैं तो और बीमारी आपकी शुरुआती दौर में है तो कुछ घरेलू उपचार आप कर सकते हैं
0: जी।
1: जैसे पशु को बुखार आ रहा है तो मेलोक्सिकैम पैरासिटामोल की जो गोलियां आती हैं मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है उसको आप खिला सकते हैं लगातार 3 दिन के लिए। एक गोली देना होता है 200 किलोग्राम पशु के लिए दिन में एक बार, 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। दूसरा, जो शरीर पर घाव है उसमें नीम के तेल में हल्दी मिलाकर लगा सकते हैं
0: जी,
1: या हल्दी और देसी घी को मिलाकर घाव पे लगाएंगे 3 से 5 दिन, 2 से 3 बार 7 से 10 दिन के लिए
0: जी जी।
1: आइवरमेक्टिन की गोली आती है 80 mg की मार्केट में, उसको एक पूरी एक गोली लगभग 350-400 किलो पशु के लिए सिर्फ एक बार खिलाना है
0: जी।
1: और अगर इसके साथ साथ आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दोनों में से कोई एक उपचार आप करेंगे
0: जी,
1: होम्योपैथिक उपचार के आपको 5 दवाई लेनी है जो कि आपके आसानी से जो हाँ होम्योपैथिक दवाई हम लोग की मिलती है वही मिल जाएगी
0: जी जी।
1: इसको पशुपालक भाई बहन नोट कर लें, ये आपको 10-10 ml की 5 दवाई लेनी है, रस्टॉक्स 30 C
0: जी,
1: बेलाडोना 30 C, थूजा 30 C, आर्सेनिकम एल्बम 30 C और पल्साटिला 30 C
0: जी।
1: मैं फिर से बोल देता हूँ, रस्टॉक्स 30 C, बेलाडोना 30 C, थूजा 30 C, आर्सेनिकम एल्बम 30 C, पल्साटिला 30 C। ये आपने 5-5 ml लेके इसको एक बड़ी बोतल में
0: जी
1: बना के सब एक ही मिक्स करके रख लिया और इसको 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाना है 10 दिन के लिए।
0: अच्छा,
1: यानी 5ों को आपने एक ही में मिला लिया बड़ी सीसी में और 10 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार इसको पिलाना है। डायरेक्टली इसके आप मुंह में भी दे सकते हैं या थोड़े पानी में मिलाकर दे सकते हैं
0: जी।
1: और अगर आप आयुर्वेदिक इलाज करना चाह रहे हैं तो आप 5 लीटर पानी ले लीजिए
0: जी,
1: उसमें 1 किलो गुड़, 1/2 किलो हल्दी, 1/2 किलो काला जीरा
0: जी,
1: 100 ग्राम काली मिर्च, 300 ग्राम अजवाइन, 300 ग्राम नीम की पत्ती और 300 ग्राम गिलो की पत्ती मिल जाए तो
0: जी जी।
1: इन सबको बढ़िया से बॉयल कर लिया, छान लिया, छानने के बाद उसको 150 ml सुबह शाम आप इसको पिलाएंगे तो देखेंगे आपकी बहुत बढ़िया इलाज है घर पर, या आप जो लंपी स्किन डिजीज के जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए वो इसी से ठीक हो जाते हैं।
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, का लंपी का कोनो बचाव बदे टीका भी उपलब्ध बा आपके विभाग में?
1: जी हाँ, लंपी स्किन डिजीज के नियंत्रण के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: और इसका टीका भी हमारे सरकारी विभाग में आता है। आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके अपने पशु को टीका लगवा सकते हैं
0: जी।
1: टीका बीमारी होने के बाद नहीं लगाया जाता, एक बार ध्यान रखें। जब हम देखते हैं कि हमारे अस्पताल पर बहुत सारे लोग आते हैं टीका लगवाने के लिए जब बीमारी हो चुकी है
0: जी जी,
1: टीका बीमारी से पहले लगता है न कि बीमारी के बाद, इसलिए टीका अपने पशु को जरूर लगवाएं, खास करके गोवंश को, और प्रशिक्षित या अधिकृत पशु चिकित्सक कर्मी से ही की सलाह के अनुसार ही लगवाएं
0: जी। अच्छा, अगर हम लोग 5-6 मुख्य बात जौन बा याद रखल चाहिए तो का हो सकला, कौन कौन बात हो सकला?
1: तो सबसे पहले मैं जो 6 पॉइंट्स अगर मैं बताऊं पशुपालक भाई बहनों को, तो है कि स्वस्थ पशु को टीकाकरण अवश्य कराएं
0: जी।
1: बीमार पशु अगर लंपी स्टिंग LSD से बीमार हो गया

0: हैं तो उसको स्वस्थ पशु से अलग रखें, साथ न बांधें। मक्खी मच्छर या जो टिक्स हैं उसको नियंत्रित करें, क्योंकि ये संक्रमण फैलाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं।
1: जी जी
0: पशुशाला साफ रखें, गोबर गंदगी और रुका हुआ पानी जमा न होने दें। बीमार पशु को बाजार में, मेले में या इधर उधर कहीं न ले जाएं, बिना पशु चिकित्सक की सलाह से दूसरे स्थान पर भी न ले जाएं।
1: जी
0: लक्षण दिखाई देते ही सबसे पहले पशु चिकित्सक से संपर्क करें, इलाज में देरी न करें और अपने आप से दवा न करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपने पंच भैया लोगन के हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से लंपी डिजिट के बारे में बतौले, ऐसे जरूर अपन जौन पशुपालक भाई लोग हवा वो लाभ उठाई हैं और अपने पशुओं का बचाव करी हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: गुलाबा बहन।
3: हाँ भोला भैया,
2: कितना बृहद रूप में जानकारी मिलल कि जागरूकता हम लोग के अगर रही तो केहू भी प्रकार के मवेशियन में रोग व्याधि आवे के संभावना नहीं बा।
3: बिल्कुल।
2: तो ये विषय पर बातचीत कैलन की लंपी स्क्रीन डिजिट जागरूकता ही बचाओ डॉक्टर अनुभव सिंह और फरिया कर पुछलन मुनई भैया भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की रोग व्याधि तबे आवाला जब कहीं न कहीं से गंदगी होला।
3: बिल्कुल सही बात कहला भैया। और गंदगी के जवाब आप कहत कहा ना तो ये समय देखा है अपन स्वच्छता ही सेवा अपन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो शुरू भइल बा स्वच्छता पखवाड़ा, अब हम लोगों के भी एमे बढ़ चढ़ के भाग लेवे के बा।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: और हर व्यक्ति के हाथ में भैया झाड़ू होए के चाहिए, कहे कि अगर हम हाथ में झाड़ू उठाई तबे देखा स्वच्छता आई। और ये नहीं कि घर में जो बड़ बा वो नहीं उठाई छोटवार झाड़ू उठावा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर केहू 1 घंटा अपने दिन का समय श्रमदान जरूर करे, यही से साफ सफाई हुई। अब तो देखा पहले जो डब्बा रहा भैया जैसे हम लोग कूड़ा रखत रही हो तो एक सूखा कचड़ा एक गीला कचड़ा, अब
2: दो तरह के रहे।
3: बिल्कुल, अब पहले 2 तरीका के रहा, अब देखा 4 तरीका का अपन बाल्टी रखल जाता।
2: अच्छा,
3: जैसे अभी तो जैसे एक थे लाल और एक थे हरियर रखल जात रहा, अपन गीला कचड़ा देखा जैसे हो गल सब्जी खाना वाला एक डब्बा रखल जात रहा, और फिर एक ठे सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक हो गई, कागज हो गई, कोनो भी चीज। लेकिन अब 2 ठे डब्बा और बढ़ गई बा,
2: लाल और करिया
3: डब्बा। एक ठे सैनिटरी कचरा जे पे डाइपर सैनिटरी पैड ये सब चीज डालल जाला अपन जैसे
2: वहाँ जो के पट्टी मलहम भी होइल हो अगर जन बाकी
3: बिल्कुल
2: खोलल गेल तो ओमे रखे लाल वाला।
3: हाँ, और एक जो करिया रंग का है ओकर ई कचरा नाम देवल गेल बा, यानी कि ओकर बैटरी मोबाइल का तार कोनो रासायनिक चीज ऐसन कि जेके छुए से या हाथ लगावे से हम लोगन के नुकसान पहुंच सकेला,
2: जैसे बल्ब फ्यूज हो गई फूट गई
3: चाहे सुई हो गई, ये सब करिया डब्बा में रखल जाला कि जहां से हम लोगन के नुकसान हुए के ज्यादा संभावना रहे। अगर ए तरीका से अगर 4 जगह का कूड़ा अगर हम लोगन का जो सफाई भैया लोग हमें सफाई में हम लोगों का सहयोग करत हम, वो समझ ले कि वो जब कूड़ा ले जाइए कचरा तो उनके छांटे में देखा आसानी हुई और कोनो भी नुकसान नहीं हुई। कहे कि देखा अब तो हम लोगों ने इतना जागरूक हो चुका है कि अपने पंच भैया लोगों भी हमें उम्मीद बा कि वो लोग भी जागरूक हो चुके होंगे। और देखा
2: तो मैंने साग सब्जी के जो छिलका निकले वो जो बाकी हरा वाला में
3: बिल्कुल
2: तो साग सब्जी पहले खरीदल जाता।
3: बिल्कुल भैया, साग सब्जी की बात करते हूँ आपके हाथ में देखा था एक पाती आ चुकल बा और हम तो कहा थे ना कि बिना देर के लिए पाती अपने पंच भैया लोगन के बाँच के बताई है।
2: बिल्कुल, तो कहाँ का पाती मंडी के बाजार भाव है कुंतल में बसंत कुशवाहा भैया भेजले हमन, आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल और प्याज 4500 से 4700 रुपया कुंतल रहला दूधी मंडी में, लहसुन 15000 से 16000 रुपया कुंतल, अदरक 12000 से 13000, वही मिर्च रहा 4500 से 4800 रुपया कुंतल, धनिया 10000 से 12000,
3: बिल्कुल
2: पालक रहा 3200 से 3700 रुपया कुंतल, करेला 3200 से 3500, और भिंडी 1200 से 1400 रुपया कुंतल रहा, लौकी 2000 से 2200 रुपया, कोहड़ी रहा 1200 से 1500 रुपया कुंतल, और नेनुआ 1500 से 1600,
3: बिल्कुल,
2: और कुनरू रहा 1600 से 2000 रुपया कुंतल, और परवल 2500 से 3000, मक्का 600 से 700 रुपया कुंतल, मूली 4500 से 5000, वही गाजर रहा 4500 से 5000, और फूलगोभी रहा 4500 से 5000 रुपया कुंतल।
3: बिल्कुल।
2: पत्ता गोभी रहा 2800 से 3000 रुपया कुंतल, मशरूम 40 रुपया प्रति पैकेट 200 ग्राम, और वही झिंगी जो तरोई कहल जाला 2200 से 2500 रुपया कुंतल।
3: अच्छा।
2: और बैगन लंबा वाला 1000 से 1200, बैगन गोल 2200 से 2500 रुपया कुंतल।
3: अच्छा।
2: टमाटर 3200 से 3500, और देसी खीरा 2500 से 2800, हाइब्रिड खीरा 1500 से 1800 रुपया कुंतल रहा।
3: बिल्कुल।
2: और वही 1500 से 1800, और बंडा 2200 से 2500 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च 4000

0: कुला वो बहन।
1: हाँ भोला भैया,
0: इतना बढ़िया मन मनसान बहन देखा स्वच्छता की ओर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और स्वच्छता के गीत के संगे संगे देखा। अब हम कहब ना कि अपन पंचायती के भी समय हो रहा बा समाप्त, लेकिन अब चले के पहले अपने पंच भैया लोगन से एक संदेश देवे के बाद कि देखा हम लोगन स्वच्छ भाई साफ सुथरा रहब और अपन देश अब आगे बढ़ी जब हम लोग शिक्षित हो।
0: बिल्कुल, कोई चीज जाने के खातिर शिक्षित हो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: अशिक्षित साफ सफाई के बात हो चाहे तो जो बाकी आगे बढ़े के बात हो चाहे पढ़े के बात हो, तो उसके खातिर शिक्षा से जुड़े के जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चूंकि कोई बात तबे समझ में आवला जब आदमी जो बाकी पढ़ल लिखल होला।
1: बिल्कुल,
0: तब घड़ी सुई इशारा करत हो
1: पंचायती यही समेटल जाए, चला चलल जाए, सब पंचन के राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम की

0: अरमान मलिक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम कीटाणु के इस गाने को।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक को। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के ओबरा केंद्र को एफएम 102.7 पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आखिर में अब लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस गाने को। फिल्म है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं ल्यूकोरिया कारण लक्षण और निदान विषय पर डॉक्टर शुभदा सिंह चिकित्सा अधिकारी से बबीता बत्रा की बातचीत।
3: महिलाएं अपनी सेहत के प्रति कम सजग रहती हैं। घर परिवार का काम तो अच्छे से संभालती हैं, पर खुद का ध्यान नहीं रखती। कुछ बहनें खाने पीने से लेकर शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज कर देती हैं। इन्हीं आदतों की वजह से बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आज हम ल्यूकोरिया के बारे में जानेंगे डॉक्टर शुभदा सिंह जी से, जो ओबरा परियोजना चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये ल्यूकोरिया है क्या?
4: ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी या व्हाइट डिस्चार्ज, वेजाइना से चिपचिपा या दुर्गंध युक्त गाढ़ा पानी जो निकलता है, उसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं।
3: अच्छा, जो वो सफेद पानी की जैसे कई महिलाओं को ये शिकायत होती है, वही ल्यूकोरिया है। इसके कितने प्रकार हैं?
4: अमूमन देखें तो चिकित्सा के भाषा में अगर हम समझाएं तो दो तरह के ल्यूकोरिया होंगे। पहला, जो मासिक के समय पानी जैसा सफेद अगर डिस्चार्ज या जो जिसमें दुर्गंध नहीं हो, ऐसा अगर पानी निकल रहा है जो मासिक के समय आता है और महीना होने के बाद खत्म हो जाता है, उसके लिए उपचार की जरूरत नहीं।
3: अच्छा।
4: दूसरा, जो गाढ़ा हो, काफी दिन तक आ रहा हो, बंद ना हो, उसमें दुर्गंध हो या पीलापन हो।
3: अच्छा।
4: या लॉन्ग टर्म रन तक काफी दिन तक आप प्रयास कर रहे हो, खाने पीना सब कुछ ठीक है, तब भी आ रहा हो। दूसरी तरह का जो है उसमें उपचार की जरूरत होती है।
3: अच्छा।
4: ये कई कारणों से हो सकता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका अगर मासिक है उसके बाद वो चला गया, या आप थके हुए हो उसके बाद खत्म हो गया, तो वहीं पे वो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे अलग कुछ है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए।
3: अच्छा, मतलब मासिक से जैसे डेट से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, और बीच में आ रहा है या लगातार आ रहा है तो मतलब संपर्क करना बहुत जरूरी है डॉक्टर से। तो ये ल्यूकोरिया के लक्षण क्या है?
4: देखिए, ल्यूकोरिया के कई लक्षण हो सकते हैं। बहुत कॉमन लक्षण जो हम सारी औरतें फील करती हैं और इग्नोर कर देती हैं, इनमें कई ऐसे लक्षण हैं जैसे कि योनि में तेज खुजली होना
3: जी।
4: या पीला पदार्थ जैसा कुछ निकलना या सफेद पानी गाढ़ा होके निकलना, बहुत सारा कमजोरी लगना, कमर में दर्द होना, बार बार पेशाब होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन लगना, इसके अलावा आंख के नीचे कालापन लगना या चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी चीजें जो करने में पहले दिक्कत नहीं होती थी उसके बाद थकान लगने लगना, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वही सारी चीजें जैसे भूख ना लगना, ये सारी लक्षण है, शुरुआती लक्षण है जो कि आगे प्रोग्रेस करके और बढ़ जाते हैं,
3: लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये किन कारणों से ल्यूकोरिया हो जाता है?
4: देखिए, कई कारण हैं। अगर सबसे कॉमनेस्ट देखा जाए, कॉमन से शुरू किया जाए, तो औरतों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती
3: जी।
4: सबसे उसमें सफाई, प्रॉपर सफाई रखना, अंडर गार्मेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं उन्हें धूप दिखाना, अच्छे से धुलना, ये सारी चीजें जो समाज की वजह से कई औरतें नहीं धूप में नहीं सुखा पाती
3: हाँ,
4: ये सारी
3: चीजें महसूस करती हैं हाँ।
4: आप जो पानी यूज कर रही हैं उसको देखना कि साफ पानी है कि नहीं, अगर साफ पानी नहीं है तो भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में खाने पीने की कमी, जैसे ब्लड की कमी की वजह से या तेल मसाला ज्यादा खाने की वजह से, कई और भी रीजन है जो कि मान लीजिए बार बार अबॉर्शन जिनको हुआ है
3: अच्छा।
4: उनके में भी चांसेस बढ़ जाते हैं
3: अच्छा।
4: या एल्डर्स में देखें जो बूढ़ी औरतें हैं उनमें मधुमेह की शिकायत या लॉन्ग टर्म कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है
3: हाँ।
4: इन सारी चीजों में हो सकता है। इसके अलावा एक और है, असुरक्षित अगर संबंध है
3: अच्छा।
4: इन सारी चीजों में भी ये प्रॉब्लम, पार्टनर टू पार्टनर कई ऐसी बीमारियां जो कि वैरी भी कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी हो सकती हैं
3: अच्छा।
4: इसके अलावा मान लीजिए अगर अधिक तनाव में, आजकल का जो जीवन है, वर्किंग वुमेन है, बाहर का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, या घर में भी औरतें हैं तनाव युक्त जिंदगी जिसमें नींद पूरी नहीं हो पा रही, कभी हमेशा थका थका लग रहा है, ये सारे रीजंस हैं जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है और ये सारे इन्फेक्शन पकड़ते हैं।
3: तो ये तो आपने सब कारण बताए कि

0: ल्यूकोरिया के कारण क्या है। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या बहुत रेस्ट करना है महिलाओं को और फिर दवा खाने की भी जरूरत पड़ती है क्या?
1: देखिए, डिपेंड्स कि आपको बीमारी किस स्टेज में है। अच्छा। अगर शुरुआती लक्षण है जो कि हल्का पानी गिर रहा है और लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से अंडरगार्मेंट्स भींगे हुए हैं और वो आप फील कर पा रहे हैं, तो उसमें शुरुआती लक्षण में सिर्फ दवा और सप्लीमेंट्स जो विटामिन के होते हैं, कालापन या फिर लगेगा पढ़ाई में मन ना लगना, हमेशा कमजोर कमजोर फील होना, जो स्कूल में बहुत अच्छे थे वो फिर परफॉर्मेंस डाउन होने लगना, ये सारी समस्याएं जो कि आगे चल के अगर लॉन्ग टर्म रन में मासिक में देरी होना, क्योंकि शरीर में विटामिन नहीं है तो मासिक भी देरी से आ सकता है, इररेगुलर हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें आती है। अगर ओल्ड एज तरफ देखिए, आप अगर समझ लीजिए जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और उनके इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या ऐसे पानी जा रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चे समय से पहले हो सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और भी बच्चों के साथ इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे बच्चे का वजन कम हो सकता है, अंदरूनी अगर इन्फेक्शन रहा तो माँ को भी आगे चल के रिस्क रह सकता है।
0: अच्छा।
1: कई तरह से कई बार ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है, जो बच्चे होने के बाद अमूमन 6 हफ्ते तक रुक जानी चाहिए, वो लोगों में और बढ़ सकती है।
0: अच्छा।
1: तो ये सारी समस्याएं हैं। ओल्ड एज में देखें, ओल्ड एज में मैंने बताया ही, अगर लालिमा देके आ रहा है या पीलापन ज्यादा है, एक आपकी शरीर में ओल्ड एज में कम कैल्शियम की कमी अपने आप होती है, उसमें अगर आप पानी जैसा लूज करते जा रहे हैं और उस तरह से आप अपना देखभाल नहीं कर रहे, तो आपको एक्सट्रीम वीकनेस लगेगा।
0: हाँ।
1: आप उस चीज से उभरना, जो एक यंग लड़की उभर सकती है उतना ओल्डर नहीं उभर सकती, तो उस चीज के लिए भी आपको शुरुआती दौर में अगर ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हैं कि नहीं कुछ दिक्कत लग रहा है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
0: और तो कुछ घर में रहकर भी उपचार किया जा सकता है, मान लीजिए भाई नहीं बहने पहुंच पा रही जल्दी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो घर में रह के क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, सारी चीजें घर से ही शुरू होती हैं। अगर कोई भी चीज कहें तो घर से ही प्रॉब्लम शुरू होती है, जड़ भी घर में है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए शुरुआती दौर पे ही शुरू हो रहा है और आपने घर में ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि कहाँ दिक्कत है, आप उसे हटा देंगी उसी तरह से। ल्यूकोरिया खास करके, मैं और बीमारियों को नहीं कहूंगी, बट ल्यूकोरिया एक ऐसी समस्या है जो अगर थोड़ा सा ध्यान देके घर के लेवल पे ही अगर आप उसको कर लेते हैं तो वो चीजें रिग्रेस कर जाती हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सिवियरिटी है भी, आप दवा भी खा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिनचर्या में या अपने घर में इन सारी चीजें जो मैं अभी बताऊंगी उनको नहीं इनकल्केट करेंगे, तो दवा भी फिर से वो रिमिट कर जाएगी। फिर से हो सकता है, हो सकता है कि दवा खाने भर तक सही रहे और फिर उसके बाद दोबारा
0: दवा बंद की और फिर हो जाए।
1: उसमें सबसे पहले आता है हाइजीन, जो हम अपने पेशेंट को यूजुअली बोलते हैं कि कभी भी नहाने के बाद एक अलग टॉवल रखना चाहिए, जिससे अपने योनि या प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ करना चाहिए, उसको सुखा के तब अंडरगार्मेंट्स पहनने चाहिए। अंडरगार्मेंट्स भी आप कॉटन के पहने वो ज्यादा बेटर है, और उन जो टॉवल सन से एकदम कांटेक्ट में रख के अंडरगार्मेंट्स भी हो, इन दोनों चीज उसको सुखाना चाहिए। गीलापन रहेगा, पसीना रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी तो ये बढ़ेगा। इसके अलावा खान पान में देखें, खट्टी चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं जो कि औरतें अमूमन बहुत पसंद करती हैं, जो ये सारी चीजें आप खाइए, बिल्कुल खाइए, हर चीज तो रोक नहीं सकता इंसान, लेकिन आप कम में खाइए, तो आप उसको कंट्रोल करिए। इसके अलावा मान लीजिए जो कई औरतें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी अगर रुक रहा है तो अपने से दवा खा लेती हैं या बार बार दवा खाती हैं, उन सारी चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। पेसिंग भी जरूरी है, तुरंत तुरंत में औरतें भी कमजोर हो जाती हैं इसके अलावा, लेकिन वो दवा खाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उन सारी चीजों में भी कमजोरी आने से ये सारी चीजें होती हैं। चौथा चीज जो आमूमन ग्रामीण औरतें सबसे ज्यादा करती हैं वो है स्टेराइल पैड ना यूज करके कपड़े यूज करना। कपड़े बहुत ही घातक होते हैं, आप लाख सफाई से करिए या कुछ भी करिए, उससे बच्चों का, यंग लड़कियां जो होती हैं स्किन बहुत पतली होती है, वहां की स्किन आमूमन बहुत पतली होती है, उसमें रगड़ खाने से और इन्फेक्शन का डर रहता है। चार चार पांच पांच घंटे पे पैड बदलना, लॉन्ग टर्म पैड अगर आप लगा के रखेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत करेगा। ये सारी चीजें इन्फेक्शन को खुद न्योता देना है। अगर आप इन सारी पीरियड्स के समय पे अच्छे से वॉश करना, सफाई रखना, मेंटेन रखना, ये सारी चीजें, अमूमन कई लोग पीरियड्स के समय नहाते नहीं, ये ऐसा कई धगा धारणा
0: है कि नहाना नहीं है तीन चार दिन,
1: बट ये गलत है। आप उसको सफाई रखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आप एक प्रॉपर तरह से उसको, उस टाइम को बिता पाएंगे। और क्लीनिंग और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट रहे।
0: अगर ल्यूकोरिया की दिक्कत हो गई तो क्या दिनचर्या रहनी चाहिए?
1: ल्यूकोरिया की अगर दिक्कत है तो खास करके आपको एक प्रॉपर दिनचर्या मेंटेन करनी

0: होगी। सुबह जल्दी उठिए। अमूमन औरतें जो होती हैं वो दिन के काम में सब चीज़ भूल जाती हैं, 12-1 बजे खाना खाती हैं। वो सारे खाना आप कुछ भी खा लीजिए, वो आपको शरीर में लगेगा नहीं। एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट लेके 2-2, 2.5-2.5 घंटे पे कुछ खाते रहिए। पानी का सेवन बढ़ा दीजिए। शरीर में फ्रूट्स या ये जो रेशे वाली वेजिटेबल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेना बढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगी और आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में भी हेल्प करेंगे। तेल, मसाला, नमक, ये सारी चीजें अगर ल्यूकोरिया है तो खास करके कम कर दीजिए। जब तक ये सारी चीजें कम नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिलेगा
1: जी।
0: इसके अलावा रात में नियमित एक समय पे सोना, इसके अलावा वॉक करना।
1: तो और हमारी बहनों को क्या कहना चाहेंगी और इसका उपचार क्या है?
0: देखिए, उपचार आपको, अगर मैंने बताया ही कि कितने तरह के हैं और किस तरह का, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम लगता है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट करें। इसकी एक प्रॉपर थेरेपी चलती है, वो थेरेपी बिना दवा बीच में छोड़े प्रॉपर जितने दिन दिया जा रहा है उतने दिन खानी होती है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि देखिए, आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो सारी चीजें उसके सराउंडिंग में होती है। आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या ओवरथिंक करेंगे या इस चीज को, प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम जितनी है नहीं उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर चीज का उपचार है, हर चीज का सोल्यूशन है। स्ट्रेस ना लेके, अगर मेन चीज है आपको विजिलेंट रहना इस दिनचर्या में, अपने जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें ध्यान दीजिए। और अगर ऐसा कोई सिम्टम लगता है तो अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट।
1: तो आज डॉक्टर शुभदा सिंह जी से ल्यूकोरिया के बारे में हमारी बातचीत हुई। आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे ल्यूकोरिया, कारण, लक्षण और निदान, इस विषय पर डॉक्टर शुभदा सिंह से बबिता बत्रा की बातचीत। इसी के साथ कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कानून की बात। ये दोनों प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी यह सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ आज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 26,50,101 दिए प्रज्वलित करने का रखा गया लक्ष्य। 35,000 वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ के साथ गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में यह सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्सी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर चालक रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और 5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत की टैक्सी है जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी।
1: जिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, थ्री व्हीलर के बारे में, अब वह रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर वे भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और बदले में उनको सामाजिक सुरक्षा की कवरेज मिलेगी 5 लाख रुपए की।
0: कार्यक्रम में श्री योगी ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल, सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटा बेस सेंटर के मोबाइल ऐप UPCDC का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ग्रामीण बैंकों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सहकारिता मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार साथ खड़ी है।
1: सरकार हर नारी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, हर युवा की अच्छी एजुकेशन के लिए और उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री आज गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज की 52वीं 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद आज पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का आधार जांच में सामने आए CCTV फुटेज, आरोपितों के बयान, बरामदगी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाया गया है। मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच चढ़ावे की रकम को कथित तौर पर निकालने या छिपाने से जुड़ी 105 से ज्यादा घटनाएं CCTV में सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के लिए घर खरीद को आसान और भरोसेमंद बनाने वाले

0: रेरा कानून की जानकारी दे रहे हैं।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
2: कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है।
1: गौतमबुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को मकान पर कब्जा मिल रहा है।
3: हमारे जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम इधर रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच संबंध को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक बल दिया है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतमबुद्ध नगर।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आगामी दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में दीपोत्सव के दौरान 26,50,101 दीयों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल घाट सहित कुल 56 घाटों पर दीप प्रज्वलित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को आज समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि दीपोत्सव 2026 का आयोजन भव्य व अलौकिक ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दीप प्रज्वलन का कार्य 35,000 वॉलंटियर्स द्वारा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही एक बार फिर वर्षा का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 से 27 सितंबर के दौरान तेज झोंकेदार सतही हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। वहीं 25 और 26 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक बारिश के कारण तापमान में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी यह सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ आज पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 26,50,101 दिए प्रज्वलित करने का रखा गया लक्ष्य। 35,000 वॉलंटियर संभालेंगे जिम्मेदारी। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर आज हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं ग्राम पंचायत व्यवस्था, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और भेंट करता है अतिश श्रीवास्तव।
2: श्रोता नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, ग्राम पंचायत के बारे में आप सभी जानते होंगे। ऐसी व्यवस्था है जो कि गांवों में न्याय व्यवस्था का पूरी प्रक्रिया को लागू कराती है। वहां जो अंदरूनी मसले होते हैं वो ग्राम पंचायत से हल हो जाते हैं। तो इसी विषय पर अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है ब्रजेश कुमार जी को। आप अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं और न्याय प्रक्रिया से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आपका स्वागत है सर। आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे इस ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में?
3: मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत कैसे गठित होती है, क्षेत्र पंचायत कैसे गठित होती है और जिला पंचायत कैसे गठित होती है, इसके क्या क्या कार्य हैं और ग्राम पंचायतों के चुनाव के पहले क्या आवश्यक कार्यवाही शासन को करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे बुनियादी व कार्यकारी संस्था है। ये ग्राम पंचायत बुनियादी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्षेत्र पंचायत है और उसके ऊपर जिला पंचायत है और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए एक साथ किया जाता है। ग्राम पंचायत पंचायत राज एक्ट 1947 के अनुसार एक पंचायत एक एरिया में गठित होती है। एरिया में एक ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत एक निकाय होगी और ग्राम पंचायत एक प्रधान व अन्य सदस्यों से मिलकर बनी होती है। यदि ग्राम पंचायत में 1000 की आबादी है तो उसमें 9 सदस्य होंगे, 1001 से 2000 तक 11 सदस्य होंगे, 2001 से 3000 तक 13 सदस्य होंगे और 3000 के ऊपर 15 सदस्य होंगे। यह चुनाव की दृष्टि प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में समान रूप से बांटा जाएगा तथा प्रत्येक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक सदस्य चुना जाएगा। ग्राम पंचायत को यदि पहले सेक्शन 95 सब सेक्शन 1 के क्लास एफ में डिसॉल्व नहीं किया गया तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष के भीतर ही किया जाएगा, इसके डिसॉल्व होने के 6 माह के अंदर कराया जाएगा। अर्थात यदि किसी तरह ग्राम पंचायत डिसॉल्व हो गई तो 6 माह के अंदर उसका फिर से इलेक्शन कराया जा सकता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव शासन नहीं करा पाती है, इसके लिए सेक्शन 12(3)(a) में प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम में दिए गए किसी अन्य प्रावधानों के होते हुए भी यदि किसी अपरिहार्य कारण से या परिस्थितियों में या पब्लिक इंटरेस्ट में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं तो अब ऐसी स्थिति में शासन 6 माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का गठन करती है जो पहले की तरह ग्राम पंचायत के विकास की कार्य करती रहती है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल ग्राम पंचायत की समय सीमा समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सदस्यों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की सीटें आरक्षित की जाती हैं और इन्हीं सीटों में से 1/3 सीटें प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को उनके ग्राम पंचायत में पॉपुलेशन के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं, परंतु ओबीसी के लिए आरक्षण 27% से अधिक नहीं हो सकता। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में दी गई समय सीमा के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोग या महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। अनारक्षित सीटों पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष में सीटों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के सापेक्ष उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, परंतु ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27% से किसी भी शर्त पर अधिक नहीं होगा। अभी उत्तर प्रदेश के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा के कृष्णा मूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 2010 में निर्णीत किया गया व विकास कृष्ण राव गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 2021 में निर्णीत किया गया में दिए गए आदेश के अनुपालन में किया गया है। विकास कृष्ण राव गवली के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के कृष्णा मूर्ति के केस पर निर्भर करते हुए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को एजाज किया है।
2: ट्रिपल टेस्ट क्या है?
3: राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के अनुसार राज्य सरकार चुनाव की अधिसूचना के पूर्व एक आयोग गठित करेगी जो समकालीन सटीक व अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त पिछड़ेपन की प्रकृति व प्रभाव की जांच करेगी। जांच के उपरांत स्थानीय निकाय लोकल बॉडी में ओबीसी को दिए जाने वाली आरक्षण की सीटें निर्धारित करेगी। तीसरा यह है कि किसी भी दशा में अन्य पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का कुल मिलाकर प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा। जब आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा इसके बाद राज्य सरकार चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकेगा।
2: तो सर क्या इसमें कोई राजनीति दखल का भी कोई प्रावधान है या उस पे कोई रोक है?
3: जी, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के अनुसार वास्तव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ही देखा जाना है। वास्तव में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व लोकल बॉडीज में है
2: तो उस आधार पर चुनाव में कुछ सीटें डिसाइड होती हैं?
3: उसी आधार पर होंगी। जो आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वही स्पेसिफाई करेगा कि कौन लोग किस ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
2: तो ब्रिजेश जी, एक बात जो आरक्षण की आपने बताई पंचायत चुनाव में, तो इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे तय किया जाता है?
3: स्टेचुटरी प्रोविजन है पंचायती राज एक्ट में कि प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा।
2: तो ये चाहे किसी भी वर्ग की हो?
3: किसी भी वर्ग की।
2: तो इसको तय करने वाली कोई समिति गठित है या कौन करता है?
3: शासन की ओर से रोटेशन के लिए कानून में व्यवस्था है। रोटेशन से यह तय किया जाएगा कि कौन सीट आरक्षित होगी कौन सीट अनारक्षित होगी और ये कानूनी प्रक्रिया है। इससे आयोग को कोई मतलब नहीं रहता।
2: अच्छा, एक बात और आती है कि जैसे इस पंचायत की महिला सीट हुई
3: जी,
2: फिर वो कितने वर्ष तक महिला सीट रह सकती है या उसमें बदलाव कब कब होगा?
3: ये रोटेशन का प्रश्न है। रोटेशन सेक्शन 12 में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि रोटेशन सरकार उसी अनुसार तय करेगी। पहले अनारक्षित अनुसूचित जनजाति की महिला, फिर अनुसूचित जनजाति के लोग,
2: अब अगले चुनाव में
3: नहीं दूसरे में, और फिर अनुसूचित जाति की महिला, फिर अनुसूचित जाति के लोग, फिर ओबीसी की महिला या अन्य पिछड़े वर्ग की महिला और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, फिर सामान्य और महिला। कुल मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा।
2: मैंने एक बात हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि इस वर्ष मान लीजिए 2026 में चुनाव है
3: जी,
2: तो ये मोहनलालगंज की जो वो है सीट ग्राम पंचायत वाली, उसमें महिला के लिए सीट फिक्स हो गई, रिजर्व महिला के लिए हो गई, रिजर्व पिछड़ा के लिए हो गई
3: जी। ये रोटेशन का प्रश्न, रोटेशन का प्रश्न है। रूल्स शासन या जीओ के द्वारा ये निश्चित करता है कि कब जीरो से शुरू होगा या कब किसको आरक्षण,
2: इसके बाद कौन आएगा
3: कौन आएगा।
2: तो ब्रिजेश जी, सब कुछ आयोग का गठन हो गया, उसके जो सलाह आ गई, अधिसूचना जारी हो गई, फिर ये जो चुनाव होगा, जो पंचायत चुनाव होगा, ग्राम पंचायत चुनाव होगा, इसकी जिम्मेदारी किस पे है?
3: आरक्षण तय करने के उपरांत शासन डीएम को सौंपेगा।
2: अच्छा,
3: और डीएम फिर उस जिले की चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा।
2: तो जैसे और बाकी चुनाव होते हैं, वोटिंग कैंप बनते हैं
3: जी,
2: उसी हिसाब से लोग आके,
3: उसी हिसाब से डेमोक्रेटिक सेटअप,
2: उसी ग्रामीण के उस एरिया के जैसे जो पंचायत
3: जो वयस्क होंगे, जो 18 साल से ऊपर के लोग होंगे, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो वोटर होंगे।
2: तो सर, क्या दलगत चुनाव होता है या इसमें पार्टी का कोई दखल नहीं है?
3: ग्राम पंचायत के चुनाव दलगत नहीं होते।
2: अच्छा, तो इसमें पार्टी वाला कोई नहीं शामिल है?
3: ना,
2: इंडिविजुअल लोग अपना फॉर्म भरेंगे, खड़े होंगे
3: जी।
2: और क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत सब में
3: ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट वोटिंग से होता है, उसे 18 साल के ऊपर के लोग चुनाव में भाग लेते हैं। क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट वे में होता है, उसके सदस्य ही वोट देते हैं।
2: अच्छा, ग्राम प्रधान का पब्लिक करती है?
3: ग्राम प्रधान का पब्लिक करती है।
2: अच्छा,
3: क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए पहले सदस्यों का चुनाव होता है।

0: और सदस्य चुनते हैं,
1: चुनते हैं मतलब इनडायरेक्ट।
0: जैसा हमारे सिस्टम में होता है कि सारे लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य हो गए, वो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री
1: लाइक दिस।
0: तो सर एक बात, ये चुनाव हो गए, उसके बाद जो भी टीम बनी है, ग्राम प्रधान है या पंचायत सदस्य हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक कैसे होता है, ये कैसे कार्य को करते हैं, किसी गांव संबंधी जो काम है उसको कैसे किया जाता है?
1: ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान ये अपनी मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में ये तय करते हैं कि बजट जो एलोकेट किया जाता है शासन से उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी इनका विचार लिया जाता है और शिक्षा स्वास्थ्य के विकास के लिए भी ये लोग काम करते हैं। बेनिफिशरीज को कब, लाभार्थियों को कब पट्टा देना है, कौन भूमिहीन है, कितने लोगों को जी राम जी में काम देना है, कौन सा काम देना है, ये सब ग्राम पंचायतों का काम है।
0: और जो गांव के क्षेत्रों में सड़कें हैं या जो तालाब हैं, इसकी देखरेख कौन करता है?
1: जी जी, वही सड़कें, नालियां और बिजली की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत करती है।
0: और जो जल स्तर इधर बहुत कम हो रहा है तो उसकी व्यवस्था किसके पास?
1: वो भी मैनेज वही करते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सदस्य मिलकर ये तय करते हैं।
0: उसके लिए फंड की जरूरत पड़ती होगी?
1: फंड शासन से आता,
0: अलग से मांग करनी पड़ती,
1: मांग करनी पड़ती।
0: तो विजय जी, आज आपने इतनी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब जो भी अगर चुनाव होंगे आने वाले दिनों में तो लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपना वोटिंग पैटर्न तय करके अपने लिए सही पंचायत चुनेंगे, सही ग्राम प्रधान चुनेंगे। इतनी जानकारी देने के लिए आप स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत व्यवस्था, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे अवकाश प्राप्त न्यायाधीश बृजेश कुमार और भेंटकर्ता थे अतिश श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के
3: हम
4: और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: अगर आप आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव के चैनल से विज्ञापनों के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश प्रदेश के हर शहर हर गांव तक, तो तुरंत करें हमें कॉल। हमारा फोन नंबर 0522453020 7, 0522453020 7।
8: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म स्वीटी वेट्स NRI केस गीत के साथ। आवाज है पलक मुच्छल की।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान

0: मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सैम भट्ट की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मर्डर केस गाने को।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: आप हैं आकाशवाणी ओबरा के साथ FM 102.7 पर और आप सुन रहे हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम के आखिर में अब लीजिए सुनिए फिल्म जन्नत के इस गाने को, केके की

फिल्म जन्नत के इसी गाने के साथ संपन्न होता है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ में इस गजल को।

0: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में इस गजल को।

अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में इस गज़ल को, और इसी अंतिम गज़ल के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 और 8 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों के साथ। इस गाने को हमने लिया है फिल्म राज से।

सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्ध NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक

0: जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: अब आप सुन रहे हैं फिल्म जाना में कुमार सानू और अलका याग्निक को।

जानते रे नाम। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के साथ अलका याग्निक को। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजा के इस गाने को। और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और कार्यक्रम में सबसे पहले आनंद लीजिए जगजीत सिंह के स्वरों का।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में इस नज्म को। आकाशवाणी की उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम के आखिर में अब लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज में इस गजल को।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह की आवाज में इस गजल को।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हम आकाशवाणी की उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते।

0: कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण।

0: के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुए थे, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरूका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के आखिर में एक बार फिर से आप सुन रहे हैं मुकेश को फिल्म सफर में।

फिल्म सफर में मुकेश के गाए इसी गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 9:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Chao, chao, come shake.
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं, तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहाँ ये कार्ड काम नहीं आता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहाँ जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है इवन OTP के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्यून पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है NHA के IT सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं कैंसर हार्ट डिजीज लीवर किडनी इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है डायलिसिस ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें है इसमें शामिल हैं कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं कैटरैक्ट है नी ट्रांसप्लांट है इस तरह के भी पैकेजेस जिसमें शामिल है तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था जो कि इस योजना के आने के बाद से और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया है तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी पोस्टपोन कर दी जाती थी उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजैक्शन संभव हो पाते हैं
2: सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं तो ये वो कैसे पता कर सकता है
3: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है जो रोबस्ट सिस्टम है और इसके चार मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है न केवल अस्पताल की और बीमारी की इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है 1-4-555 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है कौन सी बीमारी कवर्ड है किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है तो ये सारी जानकारी उससे ली सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा
2: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट
1: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है
0: और अब आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी स्टाफ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह चार स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
2: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे कैसे?
3: चार माध्यम रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत के लिए भी ये चारों चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है, जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है। क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे

0: तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपये की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपये भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
0: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड हैं। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट हैं। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल हैं, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे। और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध हैं वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा, एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है जिस बीमारी के इलाज में उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब

0: मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया है कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई,
0: डुप्लीकेसी हो गई,
1: या कह लीजिए
0: तो
1: डबल विनिंग।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया है। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम एस्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी एस्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पे पेनाल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, वॉल्यूम बहुत है वैल्यू बहुत कम है, तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है, तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स

0: नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी,
1: बिल्कुल
0: परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर
1: जी
0: देती है,
1: बिल्कुल
0: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वह वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5,000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी एनएचए कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो आईटी सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन आईटी एक्सपर्टीज हासिल करेगा, और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा।

कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को। इस गाने को हमने लिया है फिल्म चाहत से।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म जानम के इस गाने को। आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।

फिल्म एतवार में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम के साथ श्रेया घोषाल को, और इसी गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम रसधारा। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित सियाराम तिवारी का ध्रुपद गायन। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले राग जय जवंती।

0: ये था आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे पंडित सियाराम तिवारी द्वारा ध्रुपद गायन। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मणि समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
2: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो ग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुस्मनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।